मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अबजाल भाई, नखटिया बरेली से तारा चंद्र बबली, आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर, रेलवे रोड गंजडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी।

कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा और इनके साथ हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर और यशपाल दिवाकर, ओमिन पुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी और राजीव पुरी गोस्वामी। रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से रामकुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म इतिहास से, आवाजें हैं नौरदा पौडवाल और के पप्पू की, गीतकार है समीर, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। निकट बिजली घर

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म इश्क विश्क से। आवाजें हैं अनीशा चनाय और कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आंवला मोहल्ला बजरिया अंसारी चौक से हसनैन अंसारी, अदनान अंसारी, अजहान अंसारी, अब्दुल हामिद अंसारी, सद्दाम हुसैन अंसारी, जाहिद हुसैन अंसारी, शाबेज अंसारी, मोहम्मद तारिक अंसारी। इसी गीत की फरमाइश है सिमंदर पार्क वीरमगांव गुजरात से अजीत प्रेमिला, भावेश सन्नी भावसार, हेतल कृष्णा, जयमीन भावसार। अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वन्ना शर्मा, महिमा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश कनिष्का और घर के सभी लोग। 20 नंबर आवाज से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव। यहीं से हैं यूनुस खान, सरताज बेगम, सोफिया खान। मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी करगैना बरेली से आप हैं हमारे पुराने श्रोता पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मेंद्र मनमोहन जी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश बंटी, रुई भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती उमती भारती, बेटी कनक, नकुल, नैन्सी और सारांश।

इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत का सफर यहीं पे संपन्न होता है। अब अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए और अगले कार्यक्रम को लेकर आपके साथ होंगे हमारे साथी मोहम्मद परवेज।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत देवेंद्र रावत के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जनमंच। विषय है जनसंख्या नियंत्रण के प्रति हम कितने जागरूक। प्रतिभागी हैं राम अवतार, मोहम्मद शाहवान, अमरीश कुमार और संचालन किया है धारा सिंह ने।
1: आज के जनमंच कार्यक्रम में मैं आपका भाई धारा सिंह जनमंच कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो चुका हूं और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: अमरीश कुमार।
1: अमरीश कुमार जी कहां से आए हैं?
2: ग्राम नौवां तहसील नवागुंज जिला बरेली
1: जी। और अमरीश कुमार जी के बराबर में ही बैठे हुए हैं कृषक, आपका क्या शुभ नाम है?
3: श्री राम अवतार जी।
1: राम अवतार जी आप कहां के रहने वाले हैं?
3: ग्राम नौवां जिला बरेली के रहने वाले हैं।
1: और साथ में ही एक और युवा हैं जो अपना परिचय देना चाहते हैं, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम मोहम्मद शाहवान है, तहसील नवाबगंज जिला बरेली गांव चेना
1: जी। शाहवान जी आपसे ही शुरू करते हैं कि आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक की?
4: मैंने 12th क्लास तक पढ़ाई की है
1: जी। और अब इस समय क्या काम में लगे हैं?
4: मैं घर में रहता हूँ और अपनी खेती बाड़ी का काम करता हूँ
1: जी। राम अवतार जी आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है और इस समय क्या काम धाम कर रहे हैं?
3: सर हमने पढ़ाई लिखाई 9th क्लास तक की है और इस समय हम खेती का काम कर रहे हैं
1: जी। अमरीश कुमार जी आपकी शिक्षा के बारे में बताइएगा।
2: ग्रेजुएट है सर हम, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा चक्कर से अपने थोड़ा किसी खेती किसानी में लगे रहे हैं
1: जी।
2: हाँ इसी के बारे में।
1: और अभी पूरी तरह से
2: खेती बाड़ी में सर
1: जी। आज हमारा आप सभी से जनसंख्या नियंत्रण के प्रति हम कितने जागरूक हैं इस संबंध में बातचीत का विषय है। मोहम्मद साहबान जी आप ही बताइएगा कि जनसंख्या नियंत्रण से आप क्या समझते हैं?
4: जनसंख्या नियंत्रण से सर कि हमारे घर में कब लोग होंगे तो अच्छे से हमारा परिवार चल सकता है।
1: राम अवतार जी जनसंख्या नियंत्रण के प्रति कितने जागरूक रहे हम, क्या कहना है आपका?
3: सर जनसंख्या के बारे में मेरा कहना है कि हम 2 बच्चे जैसे रहेंगे तो सुखी परिवार रहेगा, उससे जो है तो हम अपने बच्चों को सही से पढ़ा लिखा सकते हैं और उनके भविष्य में पढ़ाई कराने के बाद उन्हें सही से शिक्षा दे सकते हैं
1: जी। अमरीश जी आपका क्या कहना है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में?
2: सर बच्चे कम ही ठीक है और मतलब जो कम बच्चे होंगे तो अपना मतलब जो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से हो सकती है बच्चों की और मतलब अपना घर परिवार सुख शांति से रह सकता है।
1: देखिए छोटे परिवार से और बड़े परिवार से बहुत अंतर होता है। अगर हमारा परिवार छोटा है तो हमें हम अपना रहन सहन और पालन पोषण सही कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अगर हमारा परिवार छोटा है, कहीं आना है जाना है, तो अगर हम अकेले परिवार में हैं तो ना तो कहीं आ जा सकते हैं और परिवार में हमारे भाई हैं तो कहीं आ जा सकते हैं
3: जी। सर
1: इस बारे में आपका क्या कहना है?
3: इसके बारे में सर जैसे हमारे परिवार में 4 लोग हैं

0: तो उसमें जैसे जा भी दो लोग घर पे रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं दो लोग।
1: सर अगर शादी फंक्शन हुआ तो मतलब तो सभी लोग जाने के चांसेस होता है, और सभी लोग जाते हैं थोड़ा बहुत, और परिवार मतलब पड़ोसी से कह जाते हैं अगर घर में जानवर हैं थोड़ा तो वो भी थोड़ा देखभाल कर रखते हैं।
0: चलिए खैर, ये तो बात रही परिवार की। हमारा कहना आप लोगों से ये है कि अगर बच्चे कम हैं तो हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण ये अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों से खेती बाड़ी के बारे में। तो रामोतार जी, आपके खेतों में इस समय कौन कौन सी फसलें हैं और किस तरीके से आप उनसे अच्छा उत्पादन लेने का प्रयास कर रहे हैं? इस समय सर अभी अभी हमने धान की फसल जो है तैयार करी है, पौध तैयार करके उसकी धान जो है तो लगाया है। उसकी फसल के लिए मान लो घर में सभी लोग मिलकर आपस में उसको खेत में लगा कर रोपाई की है, और उसमें जो है तो खरपतवार ना होने के कारण अभी जो है तो वो दवाई डाली है, मसेटी जो आती है कीटनाशक उसको डाला है।
1: मोहम्मद सावान, इस समय आप अपने खेतों में कौन सी फसल का उत्पादन ले रहे हैं?
2: सर अभी इस समय हम खेत में गन्ना लगाया है और धान की भी अभी तैयारी चल रही है। अब सब लोग मिलकर घर वाले खेत में धान भी लगाएंगे।
1: जी देखिए, गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें समय से पानी भी देना है, खुदाई भी करना है और उसके लिए खाद
2: खाद
1: और उर्वरक भी
2: भी
1: देना है।
2: लगाना है।
1: गन्ने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है खुदाई की, और खुदाई एक काम और खुदाई एक आदमी के बस की बात नहीं है।
2: नहीं है
1: तो कितने लोगों के माध्यम से जो है वो खुदाई की जाती है, लगभग
2: सर,
1: आप बताइएगा?
2: अभी तो हमने अपने खेत में 10 बीघे में गन्ना लगाया है, और घर में हम तीन, दो भाई और पापा, तीन लोग हैं, दो एक और पड़ोस में से ले लेकर अपने खेत को खुदाई करवा लेते हैं।
1: जब हमारी बातचीत चली थी कि भाई खेती बाड़ी में कई हाथों की जरूरत पड़ती है और एक तरफ हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो इस बारे में बताइएगा रामोतार जी
0: जी
1: कि अगर परिवार में कम लोग होंगे तो फिर हमारा खेती बाड़ी का काम भी बाधित होगा, और अगर अधिक लोग होंगे तो हमारे परिवार में बच्चों का लालन पालन भी अच्छा नहीं होगा। कैसे समावेश बैठाला जा सकता है?
0: इसमें ऐसा है सर, जैसे कम बच्चे हैं, जैसे हमारे गांव के और लोग पड़ोस के हैं उनकी सहायता ले लेते हैं हम, जैसे उन लोगों को करके पड़ोस वालों से, और उसको जो है खेतों में ले जाकर काम करा लेते हैं सर मिलजुल कर,
1: जी
0: और बदले में उनका भी कर दिया जाता है।
1: अमरीश कुमार जी, देखिए रामोतार जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे परिवार में कम लोग हैं और खेत में अधिक लोगों की जरूरत पड़ रही है काम करने की, तो अगर हम इस समय उनके खेत में काम करा देंगे तो वो हमारे खेत में काम करा
0: जी
1: देंगे। तो
0: सर,
1: आप किस तरीके से इस बात को समझाना चाहेंगे?
0: सर ये जो इन्होंने समझाई बात है मतलब ऐसा ही ठीक है, मतलब इन्होंने समझाई कि मतलब हम एक दूसरे के बदले में काम करा लेते हैं, ऐसा ही होता हम लोगों में ज्यादातर।
1: जी,
0: हाँ यही होता
1: देखिए
0: है।
1: जब गन्ने की बुवाई हुआ करती है,
0: हाँ
1: जी
0: तो
1: सर,
0: अधिक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है।
1: जी,
0: हाँ सर,
1: और गांव में सभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर के
0: इकट्ठे होकर के काम करा लेते हैं।
1: गन्ने की बुवाई करा देते हैं, और अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो
0: हम
1: हम
0: चले
1: भी
0: जाते हैं,
1: चले जाते हैं। तो इस तरीके से
0: एक दूसरे का
1: सामंजस्य,
0: काम मिलजुल कर करा लेती हैं सर।
1: जी, तो इस तरीके से सामंजस्य बिठा करके हम काम कर सकते हैं। फसलों से अच्छा उत्पादन लें उसके लिए हमें अच्छे बीज की जरूरत पड़ती है। रामोतार जी, आप किस तरीके से आप अपने खेतों में बीज डालते हैं और फिर उत्पादन लेने की बात करते
0: सर ऐसा है, बाजार से जाकर हम अच्छे बीज को देखकर किस दुकान से खरीदते हैं, उसको फिर खेत में लाकर तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको खेत में लगा लेते हैं। तो इसमें उस समय हमने गन्ना लगाया था, तो अच्छी नस्ल का गन्ना जो था खेत में खड़ा हुआ था, देखने गए थे और देखकर उसे हम लाए बीज काट कर, और उसको खेत में जुताई करवा कर बढ़िया तरीके से 4 बार जुताई लगाने के बाद, और उसमें एनपी खाद नीचे डालकर और कीटनाशक वगैरह दवाई डालकर उसको गन्ने को बो दिया हमने। इससे जो है तो हमारे गन्ने में नीचे से जो लगने वाली सुड़ी वगैरह जो होते हैं कीटनाशक, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे हमारी फसल जो है गन्ने की वो अच्छी तरह से उपज कर ऊपर निकल आती है।
1: जी, तो इस तरीके से आप अच्छा उत्पादन लेने के वो सारे प्रयत्न करते हैं
0: जी सर,
1: जिससे उत्पादन अच्छा मिल जाए।
0: जी सर,
1: अमरीश कुमार जी, आपसे हमारा सवाल यह है कि हम अपने खेतों से फसल से अच्छा

0: उत्पादन लेने का हर संभव प्रयास करते हैं। समय से खाद है, पानी है, उर्वरक है, ये सब करने के बाद जब हम उत्पादन लेते हैं तो उत्पादन कम मिलता है। इसके पीछे क्या मिट्टी की जांच भी शामिल है या नहीं है?
1: मिट्टी की जांच सर बहुत जरूरी है, क्योंकि फसल में मतलब जो दीमक लग जाती है, दीमक की वजह से नीचे से फसल जो होती है, कि गन्ना हुआ या हमारा धान हुआ, तो मतलब नीचे से उसकी जड़ खुक्कल कर देती है दीमक। जब जड़ खुक्कल कर देगी तो मतलब इसका पौधा कमजोर हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: तो फसल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी।
0: हाँ
1: सर, ये
0: मिट्टी जांच भी कराते हैं फिर?
1: कराते हैं सर।
0: हाँ, मिट्टी की जांच कराने से क्या लाभ होता है?
1: मिट्टी की जांच कराने से लाभ ये हो जाता है, मतलब जो वो मतलब आते हैं जांच करने, करके चले जाते हैं, मतलब जो हमको फिर उसी हिसाब से दवाई डालने पड़ती है खेतों में,
0: कि किस तत्व की कमी है ये भी पता चल जाता है, और उसी
1: हाँ सर,
0: चीज की जो है वो उसमें
1: मतलब उसी हिसाब से दवा डालते हैं हम।
0: हाँ, बिल्कुल सही है। तो मिट्टी जांच कराना हमारे लिए
1: जरूरी
0: बहुत
1: है सर,
0: जरूरी है,
1: बहुत जरूरी सर।
0: मोहम्मद साहबान, आप एक युवा हैं और युवाओं का रुझान खेती बाड़ी में बढ़ चढ़ कर रहता है। हर कोई ये चाहता है कि हम नई तकनीकी के हिसाब से अपनी खेती बाड़ी करें, तो आप अपने खेतों से अच्छे उत्पादन लेने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं?
2: सर, खेती में हम लोग कोई भी फसल करते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि ये किस तरीके से आसानी से फसल कर सकते हैं। फिर हम लोग फसल को जो आसानी से हो जाए उसके लिए हम यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी फसल हम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कई कल्टीवेटर या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके खेत जो मिट्टी होती है ना उसको महीन सी हो जाती है, तो कोई भी फसल लगाएंगे तो उसमें आसानी हो करने में।
0: जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम अगर अपनी खेती बाड़ी में कृषि यंत्रों का अच्छी तरह से समावेश करेंगे, अच्छी तरीके से जुताई करेंगे, खुदाई करेंगे,
2: तो
0: जिससे कि मिट्टी भी हमारी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाती है और कोई भी फसल लेंगे तो उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। रामोतार जी, देखिए हम लोग खेती बाड़ी करते हैं
3: जी सर,
0: और खेती के साथ साथ पशुपालन करना भी बहुत जरूरी है
3: जी,
0: तो क्या मानते हैं इस बात को लेकर के?
3: इस बात को लेकर सर, जैसे हम गांव में रहते हैं सर, किसान के लिए पशुपालन भी करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि उससे हमें बहुत लाभ मिलते हैं, जो कि उसको भैंस पालने से वो दूध भी देती है और उसके गोबर से जो खाद बनती है उसको हम खेतों में डाल देते हैं, उससे हमारे खेतों में फसल की पैदावार अच्छी होती है।
0: बिल्कुल ठीक है। और अमरीश कुमार जी, आपका क्या कहना है कि खेतीबाड़ी और पशुपालन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों को कैसे करके समावेश करना चाहिए?
1: पशु तो मतलब अच्छा है, अपने पास है तो गोबर ऊबर हो जाता, और दूसरी बात कि मतलब जो दूध है वो हम लोग अपने जैसे थोड़ा है तो अपने परिवार में थोड़ा चल जाता, जो थोड़ा ज़्यादा ही होता है मतलब पशु से, तो उसको मतलब जो मार्केट में भेज देते हैं, पैसा मिल जाता हम लोगों को, उस हिसाब से थोड़ा ठीक है। और जो पशु का मतलब जो गोबर है उसकी खाद बन जाती है, देसी खाद जिसे बोलते करके, देसी खाद बन जाती है, उसे खाद बना के वो खेत में डाल देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे मतलब जो हमारा थोड़ा खेत का मतलब पैदावार अच्छा हो जाता है उससे थोड़ा। अब जो अपना जो पशु है उससे हम लोग थोड़ा दूध प्राप्त हो जाता है, और थोड़ा बहुत अपने परिवार में खा लेते हैं, और जो बचता थोड़ा बहुत मतलब फालतू होता है तो अपना मार्केट भेज देते हैं बेचने के लिए,
0: और उस बिक्री से मिले पैसे को हम अपने
1: खेतीबाड़ी के काम इस्तेमाल कर लेते हैं
0: जी। देखिए, बात आपकी भी बिल्कुल ठीक है कि खेतीबाड़ी और पशुपालन अगर हम साथ साथ करेंगे तो हम अच्छी तरीके से समावेश बढ़ा सकते हैं। अंत में चलते चलते हम आपसे फिर यही बात करना चाहेंगे कि खेतीबाड़ी के साथ साथ हमारे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, लेकिन फिर वही आज के दौर में बढ़ती जनसंख्या की वजह से बहुत सी समस्याएं भी हैं। हम किसानों के आगे भी बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी हो या फिर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार की समस्या हो। क्या कहना है रामोतार जी आपका इस बारे में?
3: सर, मेरा कहना है इससे समस्याएं तो आती हैं, जैसे कम बच्चे होते हैं उससे जो है, तो हमारे मान लो बच्चे तो कम होने के होते थे, उससे तो लाभ ये है कि जो खेती है वो भी हमारी सही से मान लो कम बच्चों में बढ़ जाती, ज्यादा मान लो जनसंख्या होगी तो उसके बारे में फिर खेती में।
0: अवरीश कुमार जी, आपका क्या कहना है?
1: सर, अगर जैसे जनसंख्या कम होगी तो मतलब जो थोड़ा छोटा परिवार होगा तो खुशहाल होगा, जब जनसंख्या अगर ज्यादा होगी सर, हमारे पास जगह कम है तो थोड़ी जगह में अगर मतलब तीन कमरे अगर सर हैं तो अगर तीन बच्चे हुए तो एक कमरा हो जाएगा, अगर हमारे पास दो बच्चे हैं तो उसी में मतलब कम जगह में गुजारा कर लेगा, ज्यादा अगर खेती भी अगर उसी हिसाब से बढ़ जाए

0: जाएगी थोड़ी, अगर ज्यादा खेती होगी तो मतलब खंड बढ़ते चले जाएंगे उसमें, थोड़ी थोड़ी होते मतलब होते चले जाएंगे।
1: जी, आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। राम अवतार जी, मोहम्मद साहबान जी और अमरेश कुमार जी, आज आप लोग जनमंच कार्यक्रम के तहत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ खेतीबाड़ी और पशुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए हैं। आप लोगों का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच, और आज का विषय था जनसंख्या नियंत्रण के प्रति हम कितने जागरूक। प्रतिभागी थे राम अवतार, मोहम्मद शाहबान, अमरीश कुमार, और संचालन कर रहे थे धारा सिंह। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, 2:30 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और हमारा आज का विषय है क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है। समय रहेगा 2:30। तो श्रोताओं याद रखिएगा, और हमारा फोन नंबर है 0581-2517-200। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। तो श्रोताओं आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है।

0: हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र

0: इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानसरोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी

0: में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्प्टन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से

0: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन, जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित

0: दिल ही तो है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिल लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहेगी। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा।

था भाऊ मराठा गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्टकार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खड़ से, रक्षा ताई खड़ से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से, दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी, और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी, कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग, प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मुमल महिंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की।

0: रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
1: की जेल तोड़ के फरार, उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए पढ़िए।

0: Allah, Allah, Allah.
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी दलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: हाँ, होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहाँ था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
1: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही माँ, यहाँ

0: इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा।
0: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुकुम पीर बाबा।
0: अल्लाह
1: बाबा।
0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और

0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमान, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: महारावल का इकबाल बुलंद हो।
1: नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
2: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
1: हुजूर की मेहरबानी है।
2: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
1: जो हुक्म अंदाता।
3: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
1: खबर सही है।
3: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
1: एकदम सच है।
3: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
1: आप बजा फरमाते।
3: क्या तुम वही रहीम खां हो?
1: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
2: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
1: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
2: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शर्म देने का रह गया?
1: गुस्ताखी माफ हो अंदाता। रहीमा इंसानियत की, वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है जो 7 समंदर पार से यहां आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
2: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती
1: है। वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
3: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
1: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
3: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
1: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता। आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है, उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
2: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
1: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
2: तो फिर ठीक है दीवान जी।
4: हुकुम।
2: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
4: जो हुकुम अंदाता।
2: बस इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
1: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: गुड आफ्टरनून योर मैजेस्टी, हिज हाइनेस ऑफ जैसलमेर।
2: आइए आइए, वेलकम मिस्टर हर्षन, फरमाइए क्या खिदमत की जाए।
1: एज यू नो योर हाइनेस, हम इधर ऑन ड्यूटी आया, हमारा मिशन है ऑपरेशन सर्च। इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से मिस्टर हर्षन, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: ओह यस योर हाइनेस, सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हर्षन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
1: राम सिंह
3: हुकुम अंदाता।
2: हर्षन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है, रियासत के चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: दैट्स वेरी गुड, थैंक यू योर हाइनेस।
3: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
4: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
3: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पोख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
4: कैसी वारदात?
3: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है, गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
4: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
3: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
4: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
3: यहाँ मौत का डर किसको है, जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
4: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
3: अच्छा अलविदा।
4: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को

0: लो रहे भाई पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा। माल कहाँ?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं, जरा ये

0: पट्टा खोल दे।
1: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
0: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी दे से
1: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
0: कौन सा अस्पताल?
1: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
0: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
1: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
0: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने से करीमा।
1: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
0: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना,

0: जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा।

0: आज से ये घानी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के चीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
1: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
2: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ऊझा। श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
1: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

0: अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाटक।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 37.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हमारा आज का विषय है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है? ढेर सारे कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारे ये पहले कॉलर कौन हैं। कौन बोल रही हैं?
2: जी, मैं ईशानी खुराना बात कर रही हूँ सुजानपुर से। थैंक
1: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और
2: यू
1: ईशानी जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है?
2: जी। इस पर मैं ये कहना चाहूंगी, ज्यादा तो नुकसान नहीं किया है और ज्यादा गुस्सा करना भी नहीं किया है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं जो भी काम करती हूँ तो उसमें थोड़ी सी भी चूक रह जाती है ना, तो उसको संभालने की जगह पे मेरा और काम बिगड़ जाता है। पर मैं यहाँ गेस्ट आए थे तो मैंने ड्रिंक रेडी किया था उनके लिए रास्ता का, तो उसमें ना मैंने शुगर की जगह पे ना वो मेरा कंटेनर जो था ना वो चेंज हो गया था, मैंने इसलिए चेंज कर दिया तो शुगर की जगह पे सॉल्ट ऐड हो गया, तो इससे रिलेटेड बहुत मुझे मम्मा ने चिल्लाया भी था और बहुत मेरी इंसल्ट भी हो गई थी। लेकिन मेरा ये तो कोई इरादा भी नहीं था गेस्ट को ऐसा गंदा सा ड्रिंक पिलाने का, लेकिन वो मुझसे काम बिगड़ गया। फिर बाद में मैंने उसको संभाला और फिर दूसरा ड्रिंक मैंने रेडी करके दिया, तो यही से हो गई थी।
1: चलिए, वैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से में हमेशा काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, है ना? कौन सा गीत सुनेंगी आज आप?
2: जी, मैं गाना सुनना चाहूंगी इतिहास मूवी का, जिदा अपने दिलवर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी है।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सुनील कुमार कश्यप बात कर रहे हैं जी।
0: सुनील कुमार कश्यप, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ये कस्बा कुरड़िया, तहसील आजमगढ़।
0: सुनील कुमार जी, आज का हमारा विषय है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है?
1: हाँ जी, क्या है सर,
0: क्या किया है?
1: मैंने मोबाइल खोल दिया था एक बार,
0: अपना
1: अपना मोबाइल खोल दिया सर, कुछ नहीं और किसी से कुछ नहीं कहा, सर मोबाइल बोला बस यही, दूसरा दोबारा सर करते नहीं ऐसी बात की, मोबाइल मेरा नुकसान हो गया, बहुत दोबारा याद आई क्या नहीं है, तो बहुत दुख हुआ।
0: हाँ, गुस्से में अपना ही काम हम बिगाड़ लेते हैं, है ना?
1: जी
0: क्योंकि जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी। कोशिश करना चाहिए कि गुस्सा ना करें हम।
1: कोशिश अभी यही करते हैं गुस्सा ना करें, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ था ना सर, तो अब यही लगता है कि यार गुस्सा करेंगे तो चीजें नुकसान होगा, चीजें शांत हो जाते हैं बस।
0: कितने का नुकसान हो गया था आपका?
1: अरे गरीब हो गया था 10,000 का जी।
0: अच्छा, चलिए आप कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे जिससे कि 10,000 रुपए आपको भरना पड़ जाए, है ना?
1: सर अब करते ही नहीं है, इसलिए करते ही नहीं है।
0: गीत बता दो, अच्छा कौन सा सुनोगे? चलो
1: सर
0: सुनवाते
1: आज
0: हैं,
1: कॉल लगी, बहुत देर ट्राई कर रहा था सर, लेकिन आज कॉल लगी, कल ट्राई कर रहा था मैं।
0: सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, कौन बोल रही हैं आप?
1: जी, मैं इकरा बात कर रही हूँ फरीदपुर से। जी
0: फरीदपुर से बोल रही हैं। अच्छा, प्रोग्राम सुनती हैं आप हमारे?
1: जी सुनती हूँ।
0: और आपकी कॉल भी लगती रहती है कंटिन्यू, क्यों? क्या
1: जी जी
0: करती हैं आप इकरा जी?
1: मैं अभी इंटर कर चुकी
0: अच्छा, इंटर पास हो गई।
1: हूँ।
0: चलिए, हमारी तरफ से मुबारकबाद। और हमारा जो आज का विषय है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है?
1: जी मैंने क्या है,
0: क्या किया है?
1: जी मैं स्कूल में गई थी एग्जाम के लिए। जी मैंने गुस्से में, मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे एक क्वेश्चन याद नहीं आया, मैंने अपना पेपर ही फाड़ दिया, उसी में सारा गुस्सा निकाल दिया था।
0: तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा आपसे क्या?
1: जी मुझे सर ने बहुत चिल्लाया भी था और दोबारा मुझे पेपर भी दिया, पर मुझसे ये कहा ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, गुस्सा जो है वो हानि की जड़ है और वो हमें हानि ही पहुंचाता है। कोशिश करना
1: जी
0: चाहिए कि गुस्सा कभी भी ना करें, क्योंकि गुस्से में हमारा जो दिमाग वो है वो काम करना बंद कर देता है। तो हम
1: जी
0: कोई भी ऐसे अनाप शनाप काम कर देते हैं, जैसे कि आपने परीक्षा केंद्र पर अपने जो पेपर था वही, उसको ही फाड़ डाला है।
1: जी मैं गाना सुनाऊंगी।
0: सुन लो, कौन सा गाना सुनोगी?
1: जी तुमसा तुमसा तुमसा नहीं देखा मूवी का, मुझे तुम याद आते हो।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।
2: ओ

0: हेलो
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: सर मैं आपकी नियमित श्रोता दीक्षा पाठक बात कर रही हूँ, जिला शाहजहांपुर।
0: जी आप हमारी नियमित हैं और अपनी कॉल्स हमेशा लगाती हैं आप, है ना? और मैक्सिमम बार आपसे मेरी बात हुई है इसी प्रोग्राम में, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। ठीक हैं आप?
1: जी सर मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं सभी लोग?
0: सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। और आज का हमारा जो विषय है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है? गुस्सा तो आता ही होगा आपको।
1: जी सर मैंने तो सर बहुत नुकसान किया है, एक बार तो सर अपने रेडियो से ही गुस्सा आ गई थी, मैंने सर उसे फोड़ दिया था सर।
0: अच्छा, और इसके अलावा?
1: इसके अलावा सर कई बार तो मैंने ऐसा नुकसान किया, जैसे खाना खाते वक्त सर नुकसान कर दिया सर,
0: अच्छा
1: थाली कभी कभी सर डाल देते थे।
0: अच्छा अच्छा तो ये गलत बात है भाई, देखिए अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। और रही बात जैसे कि आपने अपना रेडियो जो भी कर दिया, तो उससे नुकसान तो आपका ही हुआ, तो गुस्से को शांत रखा करो। वैसे तो लड़कियां ज्यादा गुस्सा करती रही हैं और करना भी नहीं चाहिए,
1: करना भी नहीं चाहिए।
0: चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: सर आज अपनी पसंद का कोई भी गीत चला दीजिए।
0: सुनवाते हैं दीक्षा पाठक जी आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, आपका फोन, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में लग गया। कौन बोल रही हैं आप?
1: जी मैं अनाया बात कर रही हूँ, बताएंगे
0: अनाया, क्या मतलब होता है?
1: अनाया का मतलब मालूम?
0: नहीं मालूम। चलिए, खैर, आज हमारा जो आज का विषय है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है?
1: जी बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि मैं घर घर जैसे मैंने इंटर कर लिया है और मेरी मम्मा ज्यादातर मुझे काम बताती रहती है। तो एक बार मेरी मम्मा ने मुझे बर्तन धोने को कहा था, तो मैंने बर्तन सारे फेंक दिए और अपनी दादी घर जाकर बैठ गई।
0: अरे अरे भाई, माँ ने अगर कोई काम बताया है तो माँ का तो हाथ बढ़ाना चाहिए। भी लड़कियों का काम ही यही है कि पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करें।
1: जी मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ मैं आगे पढ़ूँ, इंटर तो कर लिया मैंने, जैसे BA में करूँ। और मेरी मम्मा कहती है पहले घर काम करो, फिर अगर आपने ये काम किया फिर मैं आपका एडमिशन कराऊंगी।
0: अच्छा चलो, खैर, उनका भी कहना मानो, क्योंकि काम करना भी जरूरी है और पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है ना, चाहे लड़का हो या लड़की। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगी आगे तुम?
1: जी मैं टीचर बनना चाहूंगी। जी
0: टीचर बनना चाहूंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अनाया, गीत बता दो अब।
1: जी मैं ये सुनना चाहूंगी फॉर एवर मूवी का सॉन्ग, इश्क ना इश्क किसी से।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं रजिया बोल रही हूँ रामपुर से। जी
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और हमारा आज का विषय है रजिया जी, क्या आपने कभी
1: जी
0: गुस्से में अपना नुकसान किया है?
1: जी मैंने नुकसान तो नहीं करा है गुस्से में। जी
0: अच्छा, तो गुस्सा आपको आता नहीं है इसका मतलब?
1: आता तो बहुत है।
0: अच्छा,
1: हाँ, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लेती हूँ मैं।
0: क्या बात है। बिल्कुल,
1: जी
0: सब्र बहुत बड़ी चीज है। अगर सब्र से आप कोई भी काम करती हैं तो
1: जी
0: उसमें ये है कि ना तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा असर पड़ता है और ना ही आपसे
1: जी
0: कोई ऐसा दुर्व्यवहार हो पाता है जिससे कि
1: जी
0: आपका भी नुकसान हो, किसी सामने वाले का भी नुकसान हो, है ना?
1: जी हाँ, दोनों ही सही रहे।
0: सही रहे हैं।
1: जी
0: चलिए, आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा।
1: अरे मेरा तो फर्स्ट टाइम का नंबर लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा
1: जी
0: आपसे बातचीत
1: हाँ,
0: करके।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो,
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: हो रही है साहब? कौन?
1: लाल मोहम्मद अंसारी बोल रहा हूँ, ग्राम करेली करानी मस्जिद बरेली से। अरे
0: क्या बात है लाल मोहम्मद साहब, आप तो हमारे दिल में रहते हैं।
1: साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है,
0: और ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा साहब?
1: रहना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में है ना, कि ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। वाकई में प्यार में वो ताकत है, कहते हैं कि वो दुश्मन को भी अपना बना लेती है ना।
1: जी, अगर आपका अखलाक, आपका नेचर, आपका बोलचाल का रवैया बढ़िया है और आप मीठा बोलते हैं, तो आप किसी को भी अपना बना सकते हो।
0: जी साहब, कोशिश करना चाहिए हर आदमी को कि मतलब किसी से भी बोले तो प्रेम के बोल ही बोले, क्योंकि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। और हमारा आज का जो विषय है, लाल मोहम्मद अंसारी जी, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है?
1: जी हाँ, मैंने गुस्से में अपना नुकसान किया है, क्योंकि जब गुस्सा आ जाता है तो जैसे किसी चीज का उतारा ही आता है। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरा वेल्डिंग का जो काम है उसमें घड़ी लगती है, तो वो घड़ी जो है वो ठीक नहीं होने में आ रही, तो बार बार ठीक करने के बावजूद भी वो ठीक रही हो, तो सारा गुस्सा मैंने उसको उतार दिया, उसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया। और जब बाजार गया तो पता चला कि वो 1800 रुपए की घड़ी, तो मेरा बहुत नुकसान हुआ। और बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये नुकसान नहीं करना था।
0: आवेश में आकर कभी कभी हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं ना
1: जी, क्योंकि ऐसा होता है, गुस्सा जो होता है आता सबको है, और गुस्से पे काबू पा लेना ही ये सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है, क्योंकि गुस्से पे जितना अपने आप को रोक लेंगे तो उतना ही आपका ही फायदा होगा, क्योंकि गुस्से में आके अपना नुकसान कर दिया तो आप आना कहीं ना कहीं वो आपको करना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके लाल मोहम्मद अंसारी जी। कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
1: ये गाना सुनवा दिए, फिल्म का नाम है स्वर्ग, इसका गाना है कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत, धन्यवाद।

same.

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और हमारा आज का विषय है, क्या आपने कभी गुस्से में अपना नुकसान किया है।

ही हम परहेज करते हैं। गुस्सा हमेशा नुकसानदायक होता है, गुस्सा जीभ का दुश्मन है, इसलिए गुस्सा कभी भी किसी के को नहीं करना चाहिए और गुस्सा लाना भी नहीं चाहिए। गुस्से में लोग अपना आपा खो बैठते हैं, जिससे हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात कही रामकुमार रेवाड़ जी कि गुस्से की हालत में हमेशा हमसे उल्टा सीधा काम हो जाता है और जिससे हमारा ही अहित होता है, तो गुस्सा कभी भी करना ही नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, और आप हैं हमारे श्रोता दिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किश्वा नूर। मैं और मेरा भाई शादी में जा रहा था, मैं अपनी शॉप पर था, मैंने उसे बोला जल्दी आ जाओ, शादी में चल रहे हैं। 2 बज रहे थे लेकिन वो देर से आया, मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैं नहीं गया। मज़े की तो बात तब है, हम घर पर खाना खाने गए, खाना ख़त्म हो चुका था, मम्मी बोली मैं अभी बना देती हूँ, हमने तो अपने ही लिए बनाया था। फिर हमने बचा हुआ जो भी खाना खाया, गुस्से में अपना ही नुकसान होता है और गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप हैं शाहरुख खान साहब। आप हैं आरवी सिंह, गुस्से में बहुत नुकसान हो जाता है, इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो हमें बहुत आता था पर सब्र शांत कर लेते, सब शांत कर लेते थे। आप हैं डॉक्टर आरवी सिंह, थाने के सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कटर शाह खां पुराने शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य जी, और ये कमेंट हमारे पास आया है प्रवीण चौहान का, आप कहते हैं कि अपने गुस्से से तो सिर्फ परेशान हुआ हूँ लेकिन दूसरे के गुस्से ने खूब नुकसान किया है। प्रवीण चौहान जी, जब भी आप कमेंट भेजें तो विस्तार रूप से लिख करके भेजें और साथ साथ अपना पता ज़रूर आप इसमें इंडिकेट करें, ताकि और भी हमारे श्रोताओं को पता चल सके कि आप कहाँ से अपने विचार साझा कर रहे हैं। आप हैं हमारे श्रोता एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आप कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, तो आपको भी आकाशवाणी परिवार का प्यार भरा बहुत बहुत सलाम। आज का विषय मुझे पसंद आया, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। एक बार की बात है कि किसी बात पर मेरे बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, मेरे बड़े भाई थे, मैं तो उनसे कुछ नहीं कह सकता था। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया, बगल में कांच की बोतल पड़ी थी, मैंने उसे उठाया और अपने सर पर ही मार लिया, मैं लहूलुहान हो गया। मेरे भाई घबरा गए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ मेरा इलाज हुआ। मेरे भाई मुझे गले लगा कर रोने लगे, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसके बाद अब जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ और वहाँ से हट जाता हूँ। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही एडवोकेट वारिस अली खान साहब, कि गुस्से पर काबू पाना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं अफजल खान ज़िला परवीज से। हाँ जी, अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक ज़रूरी कॉल करना थी लेकिन तब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फ़ोन को दीवार पर मार दिया और फ़ोन टूट गया। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। जी बिल्कुल, गुस्से की हालत में कभी कभी हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें एहसास होता है कि हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों ने जो हमारे साथ अपने विचार साझा किए।

और श्रोताओं, उसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं पर संपन्न होता है। मुझे यानी परवेज को दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो हम आपको बता दें, हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सुनेंगे कृषि पाठशाला। विषय रहेगा डेयरी पशुओं में ऊष्मीय तनाव प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनुज चौहान।

और भेंटकर्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्रायोजक IVRI इज्जत नगर बरेली। 6:30 पर हमारे एक किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी। इसमें आज की बात किसान क्रेडिट कार्ड पर, साथ ही आकाशवाड़ी गांव में किसान के साथ, बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल नसीहत और लोकगीतों का भी आप आनंद ले सकेंगे। शाम 6 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इसमें कुछ खास है आज, आज में आप सुनेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर, साथ ही होगी ओबी और डांस बरेली डांस। फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली आप सुनेंगे आज शाम 5:30 पर। अब से कुछ ही देर में आप आनंद लेंगे भजन संध्या का, यानी 5:05 पर। और रात्रि 8 आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति होगी गौरव सक्सेना की और सहयोग गजेंद्र यादव का। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:15 पर। इसमें ज्ञान की बात, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी और साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, बाल गीत में बच्चों के मुख से क्या आप जानते हैं के अंतर्गत भी कुछ जानकारी दी जाएगी, साथ ही मानव शरीर के अद्भुत रहस्य के बारे में आपको बताया जाएगा, और साथ ही हमारे सवाल हमारे जवाब आपके, और आप इसमें बाल गीतों का भी आनंद ले सकेंगे। सोशल मीडिया पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे कल सुबह 10 से 11 तक। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे 1 से 2 तक। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9, उसके बाद 2:30 पर और रात्रि 9 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण आप सुन सकेंगे कल सुबह 11:30 पर। रसरंग में आप गजल, कव्वाली और लोकगीतों का आनंद लेंगे कल अपराह्न 2। आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप सुनेंगे कल शाम 4। भजन संध्या कल शाम 5:05 पर।

कल शाम 5:45 पर कार्यक्रम सुनेंगे एक मुलाकात। कल शाम 7 बजे कानूनी सलाह बैनामा कराते समय ध्यान रखने योग बातें श्री यशेंद्र सिंह एडवोकेट से बातचीत करेंगे धारा सिंह। कल शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जनमंच, विषय रहेगा गांवों का शहरीकरण और ग्रामवासी। प्रतिभागी होंगे श्याम चरण, वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार और संचालन होगा धारा सिंह का। कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, इसमें चर्चा होगी आज की बचत कल की सुरक्षा। साथ ही एक वार्ता भी इसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे, प्राथमिक शिक्षा का बदलता स्वरूप और शिक्षक, जानकारी देंगे श्री विनोद कुमार गंगवार। इसी में आप सुनेंगे लोक मंजरी। कल शाम 6 बजे आप सुनेंगे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, कुछ खास है आज इंटरनेशनल डे ऑफ होप, साथ ही ओबी और फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। कल शाम 5:30 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम मन भावन का, और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी इस सभा की शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। ये पहला भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं भजन संध्या, और आइए अब सुनते हैं अनुप जलोटा के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हरिओम शरण के स्वर में ये भजन, और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये भजन हरिओम शरण के ही स्वर में, और साथ में है नंदिनी शरण।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और श्रोताओं समय हुआ है शाम के 5:30। आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली देवेंद्र रावत के साथ।
1: 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आप सुन रहे हैं हेलो बरेली अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत के साथ। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है।
2: हेलो। हाँ
1: हेलो बरेली,
2: जी, हेलो बरेली
1: कौन बोल रहे हैं जनाब?
2: जी। मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बोल रहा हूँ सर। बहुत
1: गरीब भाई, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है सर, सब ठीक ठाक है। मौसम बरसात का है, सुकून चल रहा है। इस समय ठंडी है, गर्मी से राहत मिली हुई है। और आज का आपका नमस्ते बरेली नंबर 1 रहा है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है, पूरा कार्यक्रम सुना है।
1: चलिए, अच्छा लगा, आपको पसंद आया हमारा प्रयास।
2: जी।
1: तो गरीब भाई, आज कौन सा गीत सुनेंगे?

0: अरे आज आप अपनी मर्जी से, कोई बारिश हो रही है इस समय तो बारिश पे ही गीत बजा दीजिए कोई बढ़िया सा।
1: तो सुनते हैं ये गीत, फिल्म चांद की कसम से, आप और हम, बरसात हो रही है, बरसात होने दें।
0: जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: जी सर, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके
1: जी हाँ
0: हैं।
1: सर, कैसे हैं आप?
0: बस आप लोगों का आशीर्वाद।

0: बात है प्यार है, कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ?
1: जी काफी अच्छा मौसम हो चुका है, बरसात हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है।
0: बहुत अच्छी बात है, गर्मी भी
1: जी सर,
0: बहुत पड़ रही
1: और
0: थी।
1: हाँ जी, गर्मी का हमने बहुत ही सामना किया था, लेकिन अभी तो थोड़ी राहत मिली है।
0: यही है प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। हर मौसम का अलग अलग अंदाज होता है, जैसे कि गर्मी थी उस समय गर्मी का मिजाज था, अब जो बरसात हो चुकी है तो बरसात अपना असर दिखाएगी, हर जगह पानी भर जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, तो इसको भी हम इंजॉय करेंगे, गर्मी को भी हमने सहन किया। इस तरह से हर मौसम को मतलब प्रकृति ने हमें दिया है ना, तो हर एक मौसम को मतलब दिल से अपनाना चाहिए।
0: कैसे लग रहे हैं बरेली के कार्यक्रम आपको?
1: जी बरेली की कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, फोन इन प्रोग्राम सुनता हूँ मैं और मोबाइल ऐप से कार्यक्रम से जुड़ता हूँ सर।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना प्रेम इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखें। तो प्रेम सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर सरगम फिल्म का गीत सुनवा दीजिएगा आप, डफली वाले डफली बजा।
0: अपने जमाने की बहुत हिट फिल्म थी और इसमें जयप्रदा जी ने एक मूक बधिर महिला का करेक्टर करा था और ऋषि कपूर जी ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था और ढपली भी
1: जी
0: बहुत बढ़िया
1: बिल्कुल
0: बजाई थी।
1: जी, काफी अच्छा सॉन्ग उस समय लोकप्रिय हुआ था और अब तक मतलब चल रहा है सर ये गाना।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम आप और सारे शोर।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा के तुकाराम जाधव उड़ाव सर जी।
0: शिवाजी की नगरी महाराष्ट्र।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: मैं महाराष्ट्र राम कराड़ जिला सातारा के तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी।
0: शिवाजी की नगरी महाराष्ट्र से सुखराम जाधव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कैसा मौसम हो रहा है सुखराम जी आपकी तरफ?
1: अभी महाराष्ट्र में क्या है, कई जगह रिमझिम बारिश गिर रही, कई जगह जमकर बारिश गिर रही, कई जगह बारिश भी अभी तक नहीं गिर रही।
0: तो हमारे केंद्र के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम।
0: बरेली का कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
1: जी जी जी बिल्कुल, रेडियो का हम दीवाने हैं।
0: जी जी, ऐसी दीवानगी हमेशा बनाए रखें। और मैं चाहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम आता आपका पत्र मिला, तो अपने पत्रों के माध्यम से या मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसमें शामिल हों और आप अपने सुझाव उसमें दें और कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, उसमें क्या अच्छा लगा और उसको और क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में सुझाव भी दें। ठीक है, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। गीत के बोले छोड़ दिया जाए क्या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: तो सुनते हैं गीत हम सब लोग आपके साथ।

0: हेलो बरेली।
1: हाँ भैया नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: जी। भैया हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो योगेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: क्या कार्य करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी क्या है मूल काम।
0: बहुत ही अच्छा, नेक काम करते हैं आप। अन्न उगाते हैं और दुनिया का पेट भरते हैं, है ना? बहुत मेहनत का कार्य होता है किसानी, है ना? तो कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ?
1: मौसम ठीक है भैया, अभी तो बीच में 4-5 दिन लगातार बारिश हुआ है।
0: जी, थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया होगा, है ना?
1: हाँ जी, बदलाव आया है।
0: हाँ, चलिए अच्छी बात है। बरेली के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: हाँ, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं। और वो जो आपका टॉपिक वाला रोजाना जो प्रोग्राम आता है, वो काफी
0: आपकी
1: बार
0: बात
1: सुनने
0: आकाशवाणी
1: लगा
0: के
1: है।
0: साथ,
1: जी।
0: वो बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं। आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कि क्या टॉपिक रखे जाए, है ना? तो जो हमारा कार्यक्रम आता है ना, आपका पत्र मिला, उसमें आप लिख सकते हैं कि आ ये टॉपिक भी आप लोग रख सकते हैं,
1: हाँ जी
0: और जो कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं उसके विषय में लिख सकते हैं, और कुछ नया आप चाहते हैं तो उस विषय में लिख सकते हैं। तो योगेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मंजिल से सुनवा देंगे, रिम झिम गिरे सावन।
0: बारिश के ऊपर आपने बहुत ही बेहतरीन गीत चुना है, और सुनते हैं ये गीत हम सब लोग आपके साथ।

0: बरेली।
1: हेलो बरेली,
0: हाँ, कौन बोल रहा है साहब?
1: मैं राम प्रसाद तरह बोल रहा हूँ, सबका छावनी सर की।
0: अशरफ का छावनी बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम प्रसाद जी। तो राम प्रसाद जी, हारमोनियम सही बज रही है?
1: हाँ साहब, सही चल रहा है। हर कौन सही चल रहा है साहब, घर से कर रहे हैं, तो काम ज्यादा आ गया तो घर पे भी ले आए और
0: जी जी
1: दुकान से भी कर रहे हैं जा करके। हाँ
0: हाँ, आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और आपको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ।
1: साहब, मेहनत तो साहब बाबूजी कुछ नहीं है, मेहनत करोगे जब भी कुछ मिलेगा।
0: बिल्कुल सही बात,
1: हाँ साहब,
0: हाथ पे हाथ धर के कुछ नहीं मिलेगा, है ना?
1: हाँ साहब,
0: सुख
1: हाथ पे
0: दुख
1: धरे कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करते रहोगे, चलते रहोगे और अपना मतलब जीवन भी सफल चलता रहेगा, पैसा भी हाथ में आता रहेगा।
0: सुख दुख जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन अर्थ भी बहुत जरूरी है ना?
1: हाँ साहब, आज के बहुत जरूरी साहब,
0: बिना अर्थ के कुछ नहीं है ना?
1: न पैसे कुछ नहीं साहब।
0: तो कैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
1: अरे साहब, आपके प्रोग्राम सब बढ़िया लग रहे हैं। आज आपने नमस्ते बरेली पेश करा, बहुत अच्छा लगा, और आपने जो गाने से सुनाए बड़े बहुत मधुरता थे, और जानकारी भी आपकी अच्छी थी साहब।
0: विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर मैंने
1: हाँ, जनसंख्या दिवस की जानकारी थी वो बहुत
0: डॉक्टर
1: पसंद आई,
0: अमित कुमार वर्मा
1: और
0: जी
1: आपने
0: से
1: सब
0: बात
1: सब
0: करी।
1: जानकारी अच्छी थी आपकी।
0: चलिए, अच्छा, हमने प्रयास किया था कि आप लोगों को पसंद आया, आपको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा।
1: हाँ साहब,
0: तो रामप्रसाद जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म सबक का गाना आया था, बरखा रानी जरा जम के बरस।
0: बहुत बेहतरीन गीत आपने मौसम के अनुसार चुना है। सुनते हैं ये गीत हम सब लोग रेडियो से।

0: के साथ आज का हेलो बरेली संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्ते।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilliCBS@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilliCBS@gmail.com।
1: आपने ट्यून किया 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ।

हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफर आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और आइए साथियों, क्यों ना आज भी हम अपने एक खूबसूरत नगमे के साथ अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें।

0: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
0: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा।
1: 5 से 31 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जाए।

बनी हुई अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और आज 11 जुलाई है और आज के दिन दुनिया भर में बेहद ही गंभीर और पर्यावरण से जुड़ा दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेत और धूल भरी आंधी का मुकाबला करने का दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों के लिए बहुत अहम है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और सूखे की वजह से रेतीले और धूल भरे तूफान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तूफान खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को खराब करते हैं और मीलों दूर तक प्रदूषण फैलाते हैं। इस दिन का जो मकसद है वो दुनिया भर के देशों को एक साथ लाना है ताकि पेड़ लगाकर और जमीन को सूखा होने से बचाकर इन तूफानों को रोका जा सके। धूल के बारीक कण जो हैं वो हवा में मिलकर हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। जब ये हमारी सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो हमारी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कुछ बीमारियां हो जाती हैं, सांस की बीमारियां। ये धूल सीधे फेफड़ों में जाकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और छाती में गंभीर जकड़न पैदा करती है। बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि छोटे बच्चों के फेफड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए धूल और प्रदूषण उन्हें सबसे पहले बीमार करते हैं। एलर्जी और इन्फेक्शन भी साथियों इससे हो सकता है। इससे आंखों में जलन, त्वचा में खुजली और गले का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। जैसा कि आपको मालूम है, बरसात के मौसम में जब हवा चलती है या उमस के बाद आंधी आती है तो आपको क्या करना है, अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उन्हें बंद रखें ताकि बाहर की धूल अंदर ना आए। बच्चों को धूल मिट्टी से दूर रखें और घर में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। फिलहाल अभी हम ख्याल रखेंगे आपके मनोरंजन का और इसीलिए हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

साथियों, आज हम एक और दिन मना रहे हैं जो कि है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की कुल आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। दुनिया के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी बात थी साथियों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने ये तय किया कि हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि बढ़ती आबादी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की जा सके। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, आइए जानते हैं। दुनिया में जमीन, पानी, खाना और नौकरियां सीमित हैं। अगर आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी तो इन चीजों की कमी हो जाएगी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम आबादी और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाकर रखें। बढ़ती आबादी का जो सीधा असर है दोस्तों, वो लोगों की सेहत पर पड़ता है, और खासतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता भी इस दिन फैलाई जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। लोगों को जागरूक करके इन समस्याओं को कम करना ही इस दिन का बड़ा लक्ष्य है। अगर आज के समय की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इतनी बड़ी आबादी होने का मतलब है कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा और ताकत है, लेकिन साथ ही हमारे ऊपर अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य, साफ हवा, साफ पानी और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और फिलहाल अभी जिम्मेदारी है आपको एक सॉन्ग सुनवाने की। एंजॉय कीजिए।

0: आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ, और प्रोग्राम में अब वक्त है सेगमेंट डांस बरेली डांस का। तो आइए डांस बरेली डांस सेगमेंट में सुनते हैं ये डांस वाला सॉन्ग।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
2: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
3: अच्छा चल, इतना बता

0: तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

और साथियों, इस डांस वाले सॉन्ग के बाद अब प्रोग्राम में वक्त है आज के सवाल का। और सवाल हमने आपसे पूछा है, किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हिरोइजन से सम्मानित किया? और इसका सही उत्तर है सेशेल्स। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, गंगा सिंह रावत, कैलाश वेदराम, रिंकी, विष्णु, इशरत बी, मोहम्मद फरमान, सुदर्शन शाह, संजय, उत्तम सिंह जागेल, हरजिंदर, मुकेश कश्यप, जॉन डी कैस्ट्रो, बजमुना प्रसाद, लक्ष्मण सिंह, राजेश वर्मा, हीरामणि वर्मा और हमारे अन्य सभी साथी।

तो साथियों, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा बधाई वाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और आप दीजिए अपनी दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी तेजपाल और पूनम के साथ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान बाड़ी सुन मारे सब भैया बहनन को आपकी बहन पूनम
2: और आपके भैया तेजपाल की
1: राम राम, राम। और कैसे हालचाल हैं भैया आपके?
2: पूनम बहन हालचाल बहुत बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान साथी हैं वो भी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी खेती बाड़ी को काम धंधो करते होंगे।
1: हाँ भैया वो तो करते होंगे और आपको पता ही है कि हमारे सब भैया बहन धान लगाने में बड़े ज्यादा बिजी हैं।
2: देखो इस समय बहुत ताक को काम चल रहा है और खेती बाड़ी को काम धंधो तो ऐसा होता है कि एक ना एक काम धंधो हमें लगो रहता है।
1: हाँ वो तो लगो रहता है भैया, लेकिन आपने देखिए कि हमारे भैया बहन बहुत देखा था कि अरे थोड़ा सो बस को तो मेड़ा उड़ा सही कर आता है कि अब जो पानी है ना थोड़ा बहुत रुको रहा है।
2: बिल्कुल, क्योंकि जाही कारण क्योंकि धान की फसल होती है ऐसी है, बाको पानी की आवश्यकता ज्यादा होता है, इसीलिए मेड़बंदियों को बहुत जरूरी है। और बरसात को मौसम चल रहा है, जब बरसात के मौसम में हम तो अपने भैया बहनों से जय कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें।

0: साथ ही अपने पशुओं के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ भैया, तो अपने भैया बहनन से बातें तो और भी करेंगे, लेकिन काओ तो पहले अपने भैया बहनन के दिमागी मंथन के लिए सवाल पूछ लें।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया बहनों, आज को सवाल है, धान की फसल में पहला खाद कब और कितनों डालें? तो हमें उम्मीद है कि आप भी जा सवाल को जवाब हमें जरूर देवेंगे। कार्यक्रम के आखिर में हम भी मिलान करावेंगे आपके जवाब से।
0: तो भैया बहनों देखो, फिलहाल अब हम चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, यह योजना ऐसी है कि इसके माध्यम से हमारे जो किसान साथी हैं अपनी खेतीबाड़ी, पशुपालन और मछली पालन अगर करना चाहते हैं तो बा में उससे सहायता बहुत मिलता है, क्योंकि 3 लाख तक को लोन मिलिए जाता है।
1: हाँ भैया।
0: और 4% ब्याज देने पड़ता है, साथ में सब्सिडी भी वापस मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे किसान साथी 1,60,000 तक को अगर लोन करावेंगे तो बा में किसी की गारंटियों की कोई जरूरत ना पड़ती है।
1: अच्छा भैया, यानी कि अगर इतना करावेंगे तो जरूरत ना है, और अगर भी ज्यादा करावे तो उन्हें जरूरत
0: पड़ती है। तो गारंटर थोड़ा मतलब जो किसी ना किसी के रूप में मांग लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा दुविधा वाली बात ना है, लोन मिल जाता है।
1: अच्छा भैया, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भैया बहन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा खेती होती है, तब बिना करने को ताएं कहूं कहूं देखो, परेशानी तो घर के चाहे छोटी खेती बारी हो चाहे बड़ी खेती बारी हो, सबके सामने आ जाती है। तो अगर वे जा तरीका से अपनी खेती करेंगे और जो लोन अगर ले लेंगे, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन मिलता है वो अगर ले लेंगे तो उनको फायदा ही होगा, है ना?
0: बिल्कुल। और जो है सालाना 4% को ब्याज देने पड़ेगा। और इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर हमारे किसान साथी अपने काम को बढ़ाना चाहेंगे, खेती बाड़ी के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय करें, तो जरूर लाभान्वित होंगे।
1: हाँ भैया, तो हमारे भैया हमें उम्मीद है कि वो जरूर लाभ लेवेंगे। जो बारो कांगे देखो कितनी अच्छी तरीका से भैया ने बताई है, तो हमें भी जो लाभ जरूर लेना चाहिए।
0: और पूनम बहन, आपको मालूम है आज दिन शनिवार को है।
1: हाँ भैया, वो तो है।
0: और आज के दिन हम किसी न किसी गांव में जाते हैं।
1: हाँ, तो गए और लग रही है आज चले,
0: तो बिल्कुल चलते हैं गाँव की ओर।

0: साथियों, आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ के कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के गांव रसूला चौधरी में। यह गांव रसूला चौधरी आकाशवाणी केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर और विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। क्या है इस गांव में रोजगार के साधन और कैसी है यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, जानने के लिए ग्रामवासियों से बातचीत कर लेते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ भैया है। भैया, आपको नाम क्या है?
1: नाम भैया मेरा सतेंद्र दिवाकर चौधरी है।
0: अच्छा,
1: और मैं ग्राम रसूला चौधरी के रहने वाला हूँ।
0: अच्छा, ये ग्राम रसूला चौधरी किस ब्लॉक का गांव पड़ता है?
1: फतेहगंज पश्चिमी।
0: तहसील कहाँ पड़ती है इसकी?
1: तहसील बरेली लगती है इसकी।
0: अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है?
1: जी,
0: कहाँ तक पढ़े?
1: मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, खेती भी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: धान लगाया है।
0: अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि खाद की, तो अगर हम अपनी खेती बाड़ी में ज्यादा से ज्यादा देसी खाद को इस्तेमाल करें
1: जी,
0: तो
1: वही किया है, गोबर है और जो होता है जो कंपोस्ट खाद होता है ये भी डाला है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: तो इससे डालने से कुछ फायदे हैं?
1: फायदा ये है कि जैसे इसकी जो दर होती है वो जो खाद लगाते हैं उससे कुछ ज्यादा आ जाती है, और बका इसको लगाते हैं तो ये ऑर्गेनिक होती है, बस ये थोड़ा दर कम रह जाता है।
0: तो इसकी गुणवत्ता में भी तो
1: हाँ, ये है ओरिजिनल चीज में।
0: तो इसकी गुणवत्ता में भी काफी फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये है कि पशुपालन करते हैं आप?
1: पालन, एक गाय पालते थे।
0: देखो, जरूरी भी है क्योंकि खेतीबाड़ी जो है अपनी बिना पशुपालन के अधूरी मानी गई है। और अगर हम पशुपालन करेंगे तो पशुपालन करने से होता है कि देखो भैया, गोबर की खाद हमें मिल रहेगी, दूसरी बात है दूध दही घी मट्ठा की कमी ना रहेगी, तो जो कि आज के समय में हमें अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि धान लग चुके हैं, तो धान को लगाने से पहले आपने अपने खेतों की तैयारी किस रूप में की, कैसे कैसे की?
1: सबसे पहले उसको ये है कि गेहूँ कटने के बाद वो पड़े ना, उसके बाद में जुतवा के डाल दिए।
0: अच्छा, गर्मी वाली जुताई कराई थी?
1: हाँ जी, जुतवा के डाल दिए, उसके बाद में थोड़ा पानी बरसा, अब बारिश तो हो नहीं रही थी इस साइड में।

0: तो वो इंजन से पानी भरा गया।
1: अच्छा।
0: उसके बाद वो हो नहीं पाया तो बारिश हो गई। अच्छा। छोड़ी, फिर वो जमीन ने पानी पी लिया तो उसकी गड़बड़ निकल गई। फिर पानी भरने के बाद में उसमें क्या है, थोड़ी डाई मार दी थी। अच्छा। जो डीएपी मिलती है अपनी।
1: अच्छा, धान लगाने से पहले हम अपने खेतों की मेड़बंदी करते हैं, तो मेड़बंदी करने से कुछ फायदे होते हैं?
0: हाँ जी, पानी को रोकना होता है, उसकी रोकथाम।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर धान की फसल है वो उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अगर हम अपने खेतों की जो मेड़बंदी कर देंगे तो उसका पानी हमारे खेत में ही रुका रहेगा। दूसरा ये है कि अब हम जो है जो भी खाद और उर्वरक डालेंगे वो भी
0: रुका रहेगा,
1: दूसरे के खेतों में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो रहे मेड़बंदी के फायदे। दूसरी बात यह है कि कौन कौन सी किस्म के धान लगाए आपने?
0: धान तो हमारा ये सरबती लगाई है।
1: अच्छा, सरबती लगाई। तो कितने दिनों की पौध हो गई थी जब आपने अपनी पौध लगाई थी?
0: पौध 35 से 40 दिन की थी लगभग।
1: अच्छा, तो पौध भी आपकी समय से लग गई। और दूसरी बात यह है कि आप युवा साथी हैं और जो है अनुभव भी आपके अच्छे हैं। दूसरा ये है कि हमारा यही कहना रहेगा कि खेतीबाड़ी जो हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद का इस्तेमाल करें, और देसी खाद को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें उससे पैदावार भी अच्छी मिलेगी और उसकी गुणवत्ता में भी हमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि प्योरिटी जो हमें खाने पीने में भी आज के समय में देख रहे हैं भैया कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो रासायनिक दवाइयों का असर है और रासायनिक उर्वरकों का असर है। अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद को इस्तेमाल करेंगे एक काम से तो काम नहीं चलता है। इसके साथ साथ हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के भैया बहनों से यह कहना चाहते हैं कि खेती बाड़ी के साथ साथ जो अन्य खेतीबाड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जैसे कि पशुपालन तो है ही, इसके साथ साथ में कुछ हमारे भैया मधुमक्खी पालन कर लेते हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कुछ बटेर पालन कर रहे हैं, भेड़ बकरी भी पालन है। तो ये अन्य व्यवसाय हैं, इनमें से अगर हमारे जो भैया बहन हैं अगर किसी न किसी व्यवसाय को लेकर चलेंगे साथ में तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी अपने बालक हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा अच्छे से करा सकेंगे, आमदनी हमारी अच्छी होगी, तभी हमारा विकास होगा। भैया सत्येंद्र दिवाकर जी, हमारी आपसे बातचीत हुई और इस बातचीत के अंतर्गत आपने खेतीबाड़ी पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया अगली कड़ी में हमारे साथ में जो हमारे युवा साथी हैं, क्यों ना इनसे बात कर ली जाए। भैया आपको नाम क्या है?
2: मेरा नाम अभिषेक कुमार है।
1: अच्छा अभिषेक कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मैं ग्राम रसूला चौधरी का रहने वाला हूँ जो कि जिला बरेली में पड़ता है।
1: अच्छा, देखो बात करें हम शिक्षा की, आपने पढ़ाई लिखाई की है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं?
2: मैं अभी बीए पास हुआ हूँ और अभी एंट्रेंस एग्जाम दिया है एलएलबी का।
1: अच्छा।
2: जो कि बरेली कॉलेज से स्थित है और रॉयल खंड से एफिलेटेड है।
1: अच्छा, उम्र की बात करूँ तो कितनी उम्र हो गई होगी?
2: मेरी लगभग 21 साल एज हो रखी है।
1: अच्छा, देखो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ कुछ खेतीबाड़ी होती है क्या?
2: हाँ जरूर होती है भैया।
1: तो खेतीबाड़ी में कौन कौन सी फसलें होती हैं?
2: गेहूँ और चावल का ज़्यादा पैदा,
1: मतलब धान की फसल ज़्यादा पैदा होती है
2: गाँव में। ऐसे लोग हैं पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी फार्म भी हैं।
1: अच्छा,
2: करते हैं खेती के अलावा।
1: आपका सुझाव क्या है कि खेतीबाड़ी के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय हैं जैसे कि मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, और जो है आपका मछली पालन है, पशुपालन है, ये करना चाहिए?
2: हाँ जरूर करना चाहिए, ताकि उनके जो घरेलू समस्याएं थोड़ी जो फसल में नहीं हो पा रही उनके, तो और कार से हो जाएंगी समस्या पूरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक काम से काम नहीं चलता है, खेतीबाड़ी जो हम करते हैं, तो अगर हम खेतीबाड़ी के साथ साथ में अगर कोई अन्य व्यवसाय लेकर चलेंगे तो समय पर जैसे खेतीबाड़ी में खाद पानी लगाने की जरूरत है, तो दूसरी जगह से अगर हमें आमदनी है जैसे पशुपालन कर रहे हैं, पशुओं से जो आमदनी हो रही है, तो वो वक्त रहते हम अपनी खेतीबाड़ी में काम में ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे घरेलू जो खर्चे हैं बाजार हाट के, साग सब्जी है, इनके जो खर्चे भी इससे चलते रहते हैं। दूसरी दो आमदनियाँ होंगी तो एक जगह का खर्च होगा, दूसरा एक जगह की जो हमारी बचत होती रहेगी, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं जानना चाहूँगा कि क्या होता था कि लड़कों में और लड़कियों में शिक्षा का भेदभाव रखा जाता था पहले, आज की क्या स्थिति है? क्या आज भी शिक्षा का भेदभाव है?
2: नहीं, आज तो देखा जाए तो आज कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो अधिक लड़कियां ही ज़्यादातर आगे निकल रही हैं लड़कों से माध्यम में। आप अभी बरेली कॉलेज की टॉपर ही है, हमारी एक लड़की है जिसने सबसे हाईएस्ट अंक प्राप्त करके बरेली का नाम रोशन किया है। और दूसरा देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में अभी हम एक

0: प्रोग्राम रखा गया था इंजीनियर डिपार्टमेंट में आईटी का, उसमें भी हमारी एक लड़की आगे बढ़ी है जिसने देहरादून में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और देखा जाए तो अधिकतर लड़कियों का ज्यादा कर है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव है, कुछ नहीं है, सभी जगह आगे चल रही हैं और हर चीज में आगे हैं। मैक्सिमम देखा जाए अभी हमारे प्रेजेंट में फरीदपुर में अंशिका वर्मा है, आईपीएस ऑफिसर जी, इतना नेत्र पे इतना अच्छा कार्य कर रही है। देखो भी एक लड़की है, वो भी शिक्षा में है। तो मेन चीज यही है कि लड़कियां भी, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां भेदभाव है, लड़कों से सब इक्वल चल रहा है
1: बिल्कुल। क्योंकि देखा जाए महिलाएं हर क्षेत्र में
0: आगे,
1: पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। चाहे खेतीबाड़ी से लेकर हवाई जहाज उड़ाने का भी काम लड़कियां कर रही हैं। जैसे गांव रसूला चौधरी में क्या स्कूल है?
0: जी है,
1: सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

0: मीना चौधरी में क्या स्कूल है?
1: जी है।
0: सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिले हैं, और जो है किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। इन योजनाओं में से किसी योजना का आपके यहाँ किसी को लाभ मिला है?
1: हाँ, कुछ है, आवास भी आए हुए हैं।
0: अच्छा,
1: मिल चुके हैं। और पहले उनने एक शौचालय का भी निकाला था, वो भी आ चुका है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मतलब शौचालय भी बने हुए हैं आपके यहाँ।
1: हाँ।
0: दूसरा ये है कि किसान सम्मान निधि की बात करूँ, किसान सम्मान निधि मिल रही
1: तो
0: जमीन जो है किसके नाम? पिताजी के नाम होगी?
1: दादाजी के नाम।
0: दादाजी के नाम है। हाँ। तो दादाजी के नाम में किसान सम्मान निधि जरूर मिलती होगी। हमारे जो भी किसान साथी हैं जिनके नाम जमीन है, उनको किसान सम्मान निधि अवश्य मिल रही है। और जिनका लाभ हमारे किसान साथी उठा रहे हैं खेती बाड़ी में सदुपयोग करके, तो होना भी यही चाहिए कि हमें जागरूक रहकर जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका हमें लाभ उठाएं। भैया, हमारी आपसे बातचीत हुई और इस बातचीत के माध्यम से आपने अपने गांव के विषय में और शिक्षा के विषय में, साथ ही खेती बाड़ी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में अगली कड़ी में जो भैया है, भैया आपको नाम क्या है?
2: हमारा नाम है मोहम्मद खालिद।
0: अच्छा अच्छा, इस गाँव का ब्लॉक कौन सा पड़ता है?
2: ब्लॉक पड़ता है फतेहगंज पश्चिमी।
0: और तहसील?
2: तहसील बरेली।
0: अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है?
2: हाँ, पढ़ाई लिखाई की हमने, इंटर तक की है।
0: अच्छा, इंटर तक आप पढ़े लिखे हैं, तो उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? लगभग
2: उम्र होगी लगभग 25 साल के लगभग।
0: अच्छा अच्छा, आपने ये देखा होगा, आप अपने गांव में रहते हैं 25 साल से, जान रहे हैं इस गाँव को, तो अब से 20 साल पहले गाँव की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? कुछ बदलाव महसूस हुआ है?
2: हाँ, काफी बदलाव गांव में मालूम हुआ है हमारे।
0: अच्छा,
2: पहले कच्चे थे, अब काफी डेवलप हो गया।
0: अच्छा, और रास्ते भी कच्चे थे?
2: हाँ, रास्ते भी कच्चे थे, अब सब मसीसी पड़ गया।
0: अच्छा, और नालियां भी पक्की बनी हुई हैं और पानी का निकास भी बढ़िया है।
2: हाँ।
0: अच्छा, अभी आप क्या काम धाम करते हैं?
2: इस समय तो डेयरी पालन शुरू किया हमने।
0: अच्छा, पशुपालन करते हैं, तो इससे पहले कुछ काम करते थे?
2: इससे पहले हमने पढ़ाई के बाद पेंटिंग का काम करता था मैं।
0: अच्छा, पेंटिंग का काम करने के बाद आपने जो पशुपालन शुरू किया, तो ये आपके मन में विचार कैसे आया?
2: ये हमारे घर में शुरू से ही होता था। खेती किसानी करते थे घर वाले, तो एक दो भैंस पालते थे।
0: अच्छा,
2: फिर मैं पेंटिंग काम पे चला गया, मैंने देखा पशुपालन में मुनाफा ठीक है, तो मैं इधर आ गया। मेरी रुचि पहले से थी पशुपालन में।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है युवा हैं और जो है पशुपालन करने का आपने घर से ही सीखा है, आपने अच्छे से कैसे पशुपालन किया जाता है। इस समय आपके पास में कितने पशु हैं?
2: इस समय हमारे पास 18 पशु हैं, सब छोटे बड़े।
0: अच्छा, तो भैंसे कितनी है?
2: भैंस है, पूरी भैंस है 7।
0: अच्छा, और गाय?
2: गाय है 2।
0: दूध दे रही है भैंसे?
2: हाँ, दूध दे रही है, 5 भैंसे, 2 गाभिन ने भी।
0: अच्छा, और गाय दे रही?
2: गाय गाभिन है दोनों।
0: अच्छा अच्छा, जो दूध जो है होता है उसका कुछ बेचने बाचने का काम करते हो? नहीं,
2: गांव में सेल करते हैं अपने हाथ से।
0: अच्छा, गांव में बिक जाता है। अच्छा, कुछ फायदा महसूस होता है पशुपालन करने से? कौन कौन से फायदे हैं? अच्छा,
2: फायदा काफी है, अपने हाथ से सेल करो तब ज्यादा मुनाफा है।
0: अच्छा अच्छा, बाकी के और भी फायदे तो महसूस होते होंगे, जैसे कि अगर मान लो खेती बाड़ी है उसमें गोबर की खाद की जो है जरूरत पूरी हो जाती हुई?
2: हाँ, काफी जो गोबर होता है उससे हम खाद ही बना देते हैं, उपले भी ऐसे अपने बिक जाते हैं।
0: अच्छा,
2: हाँ, और जो गोबर होता है वो खाद के रूप में खेतों में काम आ जाता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब अपने पशुपालन कर रहे हैं तो गोबर को जो है खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमें ज्यादा रासायनिक खादन की और दवाई की जरूरत ना पड़ती है।
2: जी, जी।
0: और आजकल सरकार को जोर जाए है कि ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी में अपनी देसी खाद को इस्तेमाल करें।
2: देसी खाद से जो है ना फसल भी अपनी ज्यादा बढ़िया होती है।
0: बिल्कुल सही बात बताई आपने कि उत्पादन अच्छा मिलता है,
2: बहुत बढ़िया होता है।
0: अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे हो कि पशुपालन करते हो,
2: जो पशुओं को घुमाने भी ले जाते हैं जंगल में 1-2 घंटा, ताकि वो ठीक तरह से बीमारी कम लगती है।
0: तो बिल्कुल सही बात है, थोड़े बहुत चल फिरे रहेंगे तो जो है थोड़ा सो अपनों वो सही रहता है कि अपने थोड़ा बहुत चरे आए और बाकी पानी पत्ता भी आए, तो होता है। पशुपालन तो करते ही हो और खेती बाड़ी होती है?
2: खेती बाड़ी भी होती है।
0: कौन कौन सी फसलें होती हैं?
2: गेहूं धान ही करते हैं ज्यादा।
0: अच्छा, तो हरे चारे के रूप चरी बोल देते हो?
2: गर्मी में चरी बोल देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, एक जो है घास और आती है, संकर नेपियर घास बोलते हैं इसे, जिससे हमारे जो किसान साथी अगर उसको लगाए लें, उसकी जड़ होती है तो 12 महीना उस चारे के रूप में काम में लेते हैं उसको। अच्छा। और मुलायम चारा होता है, पशु बहुत मन से पसंद करते हैं उसको। अच्छा। तो हम आपको सलाह दे चाहेंगे वो संकर नेपियर घास भी जरूर लगाओ, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पास में जो है 17-18 पशु हैं और अच्छे से आप काम धाम कर रहे हैं। और अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, जैसे कि किसान सम्मान निधि है और कुछ उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडरों मिले हैं, कुछ के जो है आवासों मिले हैं, तो इन योजनाओं में से काउ योजनाओं को लाभ मिलूंगा आपको? अच्छा, किसान सम्मान निधि का पैसा आता है पिताजी खाते?

0: लाभ आता है किसान,
1: मतलब किसान सम्मान निधि का आपको फायदा मिला?
0: ये आता है।
1: अच्छा, और साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है?
0: वो बढ़िया हमारे गांव में।
1: अच्छा,
0: सफाई भी टाइम से होती है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे।
1: और सफाई कर्मचारी अगर ना आते हैं तो साफ सफाई अपने आप कर लेनी चाहिए?
0: हाँ, वैसे करते हैं नॉर्मल, तो अपने आप ही की तो अपने आप ही करना है।
1: हाँ हाँ,
0: जो बाहर रोड रूट पे तो उसकी जिम्मेदारी होगी।
1: अच्छा, फायदे तो होंगे साफ सफाई के, क्या फायदे हैं?
0: साफ सफाई के फायदे बहुत है, बीमारी बहुत दूर रहती है साफ सफाई से।
1: हाँ सही बात, जो है जैसे मच्छर मक्खी है उन से बचाव हो जाता है। आप से हमारी बातचीत हुई खालिद भाई, और आपने इस बातचीत के दौरान पशुपालन और खेतीबाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में अगली कड़ी में जो भैया है, भैया आपको नाम क्या है?
2: रमेश श्रीवास्तव।
1: अच्छा रमेश जी, आप ये बताओ कि कुछ पढ़ाई लिखाई की आपने?
2: नहीं।
1: कितनी उम्र हो गई होगी आपको?
2: लगभग 45 साल।
1: हमारी आपकी जो बातचीत हो रही है वो किस गांव में हो रही है?
2: ग्राम रसूला चौधरी में।
1: आप बता रहे हो कि उम्र आपकी 45 साल हो गई।
2: 45।
1: इस 45 साल के सफर में आपने देखा होगा कि आपके इस गांव की हालत अब से 20 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है?
2: पहले से तो बढ़िया है।
1: मतलब पहले से अब विकास हुआ है। पहले घर मकान कैसे होते थे?
2: पहले कच्चे होते
1: थे। कच्चे थे, अब घर मकान देख रहे हैं?
2: अब तो पक्के हैं।
1: पक्के हैं, रास्ते भी ठीक ठाक हैं, सीसी रोड पड़े हुए हैं। अच्छा, नालियां भी पक्की बनी हुई?
2: नालियां भी पक्की हैं।
1: अच्छा, देखो पहले कींच कांच रास्तन में ज्यादा हुए करती और पानी को निकास बढ़िया है, रोड पक्के बने हुए हैं।
2: रोड पर
1: बात करूं मैं खेतीबाड़ी की, तो आप क्या खेतीबाड़ी करते हैं?
2: करते तो।
1: कौन कौन सी फसलों की खेती होती है?
2: बस गेहूं और धान।
1: अच्छा, गेहूं धान की फसल होती है। अच्छा, इस वक्त
2: धान लगा हुआ है।
1: अच्छा, धान लगा दिया है। अच्छा, धान कौन से किस्म का धान लगाया आपने?
2: छोटा धान लगाया है।
1: अच्छा, खाने वाला?
2: खाने वाला।
1: अच्छा, कितनी पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं?
2: मात्र 2 क्विंटल बीघे।
1: 2 क्विंटल बीघे की तो पैदावार थोड़ी सी कम मानी गई, क्योंकि कारण था ऐसा कि 2 क्विंटल की पैदावार हो, हम देखते हैं हमारे जो किसान साथी हैं 3-4 क्विंटल 5 क्विंटल तक के धान काट रहे हैं।
2: वो हमारे यहाँ की जमीन थोड़ी हारती है।
1: जमीन तो हारती है, लेकिन हम अब पशुपालन करें कि पशुपालन के बगैर खेती बाड़ी अधूरी है। पशुपालन जब हम करेंगे तो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा देसी खाद होगी, और हम देसी खाद को हरी खाद को प्रयोग अपने खेतन में करेंगे तब हमारी खेती बाड़ी जो है अच्छो पैदावार देगी। दूसरा ये है कि जो उसकी गुणवत्ता है वो भी हमें प्योर मिलेगी और बीमारी रहित मिलेगी, क्योंकि बीमारी जो उसमें नहीं होगी, खान पान भी हमारा अच्छा ठीक ठाक रहेगा। दूसरी बात करें खान पान की, अगर हम पशुपालन करेंगे तो आप समझ रहे हो पशुपालन करने से कौन कौन से फायदे हैं?
2: पशुपालन करने से फायदे तो बहुत है, खाद भी मिलती है, दूध भी मिलेगा।
1: आपके कितने बच्चे हैं?
2: हमारे बच्चे हैं 5।
1: अच्छा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं?
2: पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं।
1: कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: इंटर में है।
1: अच्छा,
2: हाई स्कूल में है, 6ठी क्लास में।
1: अच्छा, गांव में स्कूल है आपके?
2: गांव में स्कूल है।
1: पढ़ाई लिखाई की कोई दिक्कत नहीं है कि आप बता रहे हो कि आपने अपने बच्चों को, कुछ बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, कुछ 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपने भी बच्चों का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि आपने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की।
2: नहीं किया।
1: तो इसका अभाव आपको होता है, परेशानी होती है कुछ?
2: पढ़ाई लिखाई ना भी, उसकी बहुत परेशानी होती है।
1: आज पढ़े लिखे होते तो बहुत से काम है जो कर लेते।
2: बैंक में भी जाते, दूसरों से फॉर्म भरवाना पड़ता।
1: हाँ, दूसरा ये है कि इसी सोच को रखते हुए आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। जैसे कि किसान सम्मान निधि मिल रही है हमारे किसान साथियों को, तो आपको मिल रही है?
2: मिल रही है।
1: अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं?
2: हमें नहीं मिला।
1: अच्छा, आवास भी बने हैं, शौचालय है?
2: शौचालय है।
1: दूसरा ये है कि साफ सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपनों विकास, अपने बच्चों का विकास कर सकते। रमेश भैया, मैं देख रहा हूँ खेतीबाड़ी तो करते ही हो, लेकिन खेतीबाड़ी के साथ साथ रोजगार के बतौर एक आपने दुकान भी खोल रखी है।
2: दुकान खोल रखी है
1: बाल कटिंग?
2: बाल कटिंग।
1: इससे आपको कुछ लाभ होता है?
2: अरे पूरा बच्चों का पालन पोषण इसी से तो हो रहा है, कुछ बढ़िया चल रहा है।
1: अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई
2: तो कराया?
1: अच्छा, बहुत से खर्चे हैं?
2: बहुत से खर्चे, कोई दिक्कत नहीं आ रही।
1: अच्छा, होना भी यही चाहिए। हम तो अपने ग्रामवासियों से, अपने गांव के लोग हैं, उनसे यह कहना चाहते हैं कि एक काम से गुजारू ना है, एक के साथ में दूसरों काम करना बहुत जरूरी।
2: पाल रहे हैं हम।
1: अच्छा, कितने पशु हैं?
2: 2 पशु।
1: अच्छा, दूध दे रहे हैं?
2: दूध ना दे रहे हैं।
1: अच्छा,
2: छोटे छोटे बच्चे।
1: आप बता रहे फायदे तो है ही पशुपालन से?
2: देखो नहीं, गोबर भी होता है, दूध भी मिलता है।
1: अच्छा,
2: और पैसा भी मिलता है।
1: भैया रमेश जी, हमारी आपसे बातचीत हुई, और इस बातचीत के अंतर्गत आपने अपने गांव के बारे में और खेतीबाड़ी के बारे में और अपने काम धाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ का कार्यक्रम इसी गांव रसूला चौधरी में संपन्न करते हैं, और चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर। आप सभी ग्रामवासियों को हमारी राम राम।

0: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे किसानवाड़ी गांव में किसानों के साथ क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। आज को विषय हो खेतीबाड़ी में धान की रोपाई, पशुपालन, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत। आज को गांव तो ग्राम रसूला चौधरी, विकास खंड फतेहगंज, तहसील सदर, जिला बरेली। प्रतिभागी थे रमेश श्रीवास्तव, सत्येंद्र दिवाकर, मोहम्मद खालिद, अभिषेक कुमार। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की और प्रस्तुति सहयोग रहो तेजपाल भैया और आपकी बहन पूनम को। भैया बहनों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके यहाँ पर भी किसान बाड़ी की टीम पहुँचे, तो आप भी एक पत्र के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को पता लिख के भेज सकते हो और बामे मोबाइल नंबर जरूर लिख दिए।
1: तो भैया बहनों, अब मनोरंजन कर लेते हैं जा प्यारे से लोकगीत के साथ। तो भैया बहनों सुन लेते हैं जो प्यारों से लोकगीत।

0: और भैया बहनों, अब है बारी उस सवाल के जवाब की जो कि हमने पूछो हो कार्यक्रम के शुरुआत में। भैया बहनों, आज को सवाल हो, धान की फसल में पहला खाद कब और कितना डालें। तो भैया बहनों, जा सवाल का जवाब है कि पहलो खाद 20 से 25 दिन के बाद डाल देना चाहिए और लगभग एक एकड़ में 35 से 40 किलोग्राम यूरिया जरूर डालें और आवश्यकता पड़ने पर जिंक और सल्फर को भी इस्तेमाल करें। बात करें नसीहत की, तो भैया बहनों, आज के कार्यक्रम से हमें यही नसीहत मिलते कि हमारे जो किसान साथी हैं वो अपनी खेतीबाड़ी में समय को विशेष ध्यान रखें, साथ ही बरसात के मौसम में पशुओं का के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब अपने भैया बहनों से विदा लेने की वेला आ गई है। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया तेजपाल
1: और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति। भैया बहनों,
0: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी तेजपाल और पूनम के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: कार्यक्रम कृषि पाठशाला सुनने वाले सभी किसान भाइयों को राम राम। साथियों, आज की कृषि पाठशाला का विषय है डेयरी पशुओं में ऊष्मीय तनाव और प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर अनुज चौहान, प्रधान वैज्ञानिक IVRI इज्जत नगर बरेली से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा विषय है डेयरी पशुओं में ऊष्मीय तनाव, तो ये क्यों होता है?
2: जी, जैसा कि भारत के कई क्षेत्रों में, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकतर क्षेत्रों में गर्मियों में 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब तापमान 40-45-47 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और जबकि हम डेयरी पशु गाय और भैंस की बात करें तो उनके लिए अच्छा तापमान, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है, वो लगभग 25-26 डिग्री है।
1: जी,
2: और 35 डिग्री तापमान के बाद जो हमारी विदेशी गायें हैं, संकर गायें और भैंसें हैं, उनमें तनाव शुरू हो जाता है गर्मी के कारण, और देसी गाय लगभग 40 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकती हैं। तो क्योंकि बाहर का तापमान बढ़ा होता है, गर्मी का तनाव इसलिए होता है क्योंकि गाय या भैंस जितनी गर्मी पैदा करती हैं या सोखती हैं, उतनी आसानी से सांस लेने, पसीने आने या फिर प्राकृतिक हवा या पंखे की हवा के जरिए बाहर नहीं निकल पाता।
1: जी,
2: इस कारण से यह तनाव होता है। ये तनाव भैंसों में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनमें पसीने की ग्रंथियां कम होती हैं और शरीर का रंग काला होता है, तो उन पर तनाव का असर थोड़ा ज्यादा होता है।
1: अब बात करते हैं कि जो ऊष्मीय तनाव है, इसके प्रमुख शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान होती है?
2: जी, इसके प्रमुख लक्षणों में है सांस फूलना, यानी जो पशु है वो तेजी से सांस लेगा। अगर आप देखेंगे सामान्य दर 25-40 एक मिनट में एक पशु सांस लेता है, लेकिन जब हीट का तनाव होता है, जब गर्मी का तनाव होता है, तो 60 से भी अधिक बढ़ जाती है।
1: जी,
2: साथ साथ पशु के व्यवहार में भी बदलाव आता है, वो शरीर की गर्मी निकालने के लिए लगातार

0: खड़े रहता है, सुस्त रहता है, चारा बहुत कम खाता है, जुगाली कम करता है। इसमें भी गंभीर लक्षण, यदि कोई गाय या भैंस मुंह खोलकर हांफ रही है, लार गिरा रही है, उसकी आंखें लाल हैं, या शरीर का तापमान 104 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो यानी उसे लू लग चुकी है, अब उसके जीवन पे भी खतरा है।
1: जी, मतलब ये सब पहचान है, एक जो किसान है या पशुपालक है इन लक्षणों को देखकर ये तय कर सकता है कि हमारे पशु में हीट स्ट्रोक का प्रभाव है।
0: जी
1: अब बात करते हैं कि ऊष्मीय तनाव के क्या मुख्य प्रभाव होते हैं और पशुपालकों को ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं।
0: जी जो ऊष्मीय तनाव है वो दो मुख्य कारणों से नुकसान पहुंचाता है। एक तो जो पशु की दूध उत्पादन है उसकी मात्रा में गिरावट आ जाती है,
1: जी
0: यानी 15-20% तक दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो सीधा नुकसान होता है। दूसरा, इसका असर पशु की प्रजनन क्षमता पर आता है, यानी पशु या तो समय पर गाभिन नहीं होगा, उसमें रिपीट ब्रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि
1: जी
0: ऊष्मीय तनाव के कारण पशु में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, अंडे की गुणवत्ता खराब हो जाती है और शुरुआती भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार पशु लंबे समय तक हीट में नहीं आता, यानी
1: जी
0: एनिस्ट्रस में चला जाता है,
1: जी जी
0: तो इस मौसम में ऊष्मीय तनाव के कारण अंडाशय सुस्त हो जाते हैं और वो जरूरी हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन भी नहीं बना पाते। इसके साथ साथ जो गाय या भैंस गर्भावस्था के आखिरी चरण में है, तो उसमें प्रसव जल्दी हो जाता है, तो जो बछड़ा जन्म लेगा वो कम वजन का होगा,
1: जी
0: उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, और खासकर वो जो माँ है उसमें दूध भी कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत गंभीर मामलों में पशु की जान भी जा सकती है।
1: बिल्कुल, तो ऊष्मीय तनाव बहुत नुकसान पहुंचा सकता है पशुओं को, उनकी प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव डालता है, दुग्ध उत्पादन पर भी प्रभाव डालता है और शारीरिक जो विकास है पशुओं का वो भी नहीं हो पाता और साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है।
0: जी
1: अब बात करते हैं कि डेयरी में बहुत सारे पशु रहते हैं और उसके प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात आती है, अगर पशु प्रबंधन की बात करें तो उनके आवास की, तो आवास किस तरह से बनाए जाएं, क्या उपाय किए जाएं जो हम अपने पशुओं को ऊष्मीय तनाव से बचा सकें।
0: देखिए, आपके श्रोता किसानों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो ऊष्मीय तनाव से बचने के लिए आवास जब शुरू में बनाएं तब भी ध्यान रखें।
1: जी
0: एक तो पूरब से पश्चिम की छोर वाला उन्मुखी आवास आप बनाएं, ताकि दिन में जब गर्म समय हो तो थोड़ा कम दिक्कत आए। उसके साथ साथ जब आप आवास बना रहे हो तो छत की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर रखें।
1: जी
0: इसके अलावा जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो पशुओं को छाए में रखें, छायादार वृक्ष अपने यहाँ लगाएं। उसके साथ साथ पंखे की व्यवस्था करें, यानी फर्राटा या भारी पंखा लगाएं, फॉगर्स या स्प्रिंकलर आप लगा सकते हैं, यानी जो पानी का छिड़काव होता है स्प्रिंकलर आप लगा सकते हैं,
1: जी
0: तो जो पंखा चलेगा और पानी छिड़का जाएगा तो तापमान कम होगा। इसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन, कई बार क्या होता है वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होता है, तो एग्जॉस्ट फैन भी पशुओं के बाड़े में लगाना चाहिए।
1: जी
0: इसके साथ साथ भैंसों में कुछ विशेष ध्यान रखना है कि उनको दिन में 3-4 बार नहलाना जरूर है, ताकि शरीर का तापमान कम हो, खासकर सुबह 11 से लेकर और दोपहर 4 बजे के बीच।
1: जी
0: उनके लिए तैरने के तालाब यानी वेलोइंग टैंक की व्यवस्था की जा सकती है, जो 1 से 1.5 मीटर गहरा हो, और दोपहर को 1-2 घंटे भैंसे उसमें जरूर जाके नहाएं। इसके साथ साथ और भी कुछ हम सस्ते उपाय कर सकते हैं, जैसे जिस दिशा से लू आ रही है आपके फार्म में, वहां पर आप जूट के बोरे डाल दें और उन पे हर आधे पौने घंटे में पानी छिड़कते रहें, तो वो
1: जी
0: देसी कूलर की तरह काम करेगा। साथ साथ छत पर पराली या पुआल बिछाकर उसे थोड़ा बहुत गीला कर सकते हैं,
1: जी
0: तो भी तापमान कम होगा। और एक और साधारण सा उपाय है कि छत पर आप सफेद रंग की पुताई, चूने से चाहे पुताई कर लें, तो सफेद रंग जो है वो हीट को, काले रंग के मुकाबले हीट को अंदर उतना नहीं आने देता, तो 3-4 डिग्री का तापमान इन सबसे उपायों से आपके शेड में कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करें कि जब पशु में ऊष्मीय तनाव का प्रभाव दिखने लगता है, ऐसे में हम चाहते हैं कि पशुओं से अच्छा उत्पादन भी मिले, तो क्या पशु आहार इस समय दिया जा सकता है? ऐसी स्थिति में किस तरह से हम पशु आहार का प्रबंधन अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं जिससे कि उनका उत्पादन बेहतर रहे?
0: इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, आहार और पानी दोनों में ध्यान देना है। सबसे पहले, क्योंकि जब ऊष्मीय तनाव होता है तो पशु शरीर में गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है,
1: जी,
0: पानी कम हो जाता है शरीर में, तो इसलिए हमें साफ और ठंडा पानी की व्यवस्था पशु के लिए करनी चाहिए। अगर हम औसत देखें तो एक गाय या भैंस रोज 60 से 70 लीटर पानी पीती है, और
1: जी
0: अगर वो दूध देने वाली है, 8-10 लीटर दूध दे रही है, तो 100 लीटर से ज्यादा पानी पी सकती है। तो इसलिए हमें

0: गर्मियों में खासकर पशु 50% अधिक पानी पी सकते हैं, इसलिए 24 घंटे छाया में साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था रखें।
1: जी
0: इसके साथ साथ जो दाने चारे में व्यवस्था करनी है, क्योंकि दिन के समय यदि पशु ज़्यादा खाएगा तो उसके शरीर में गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो आप कोशिश करें जो दाना या भूसा वो आप सुबह जल्दी या शाम को देर, यानी सुबह 7 बजे से पहले या फिर शाम के 7-8 बजे के आसपास आप उसको खिलाएं। दिन में आप हरा चारा खिलाएं ज़्यादा, क्योंकि हरे चारे में पानी भी ज़्यादा होता है और उतनी गर्मी नहीं बढ़ती है। जैसे आजकल के मौसम में नेपियर, मक्का, ज्वार या चरी आपको मिल जाएगी, तो सूखे भूसे की मात्रा थोड़ी घटाकर इनकी मात्रा आप बढ़ा दें। साथ में पशु कम खाएगा तो कम खाए लेकिन उसमें ऊर्जा ज़्यादा मिले, तो
1: जी
0: ऐसे में आप बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन 100 ग्राम प्रति पशु की दर से आप पशु को खिला सकते हैं। क्योंकि इस गर्मी वाले मौसम में पशुओं में जो पेट है, जो रूमन है, उसमें एसिडिटी बिगड़ जाती है उसकी, तो मीठा सोडा जो घर में इस्तेमाल होता है वो 50 ग्राम रोज पशु को खिलाएंगे तो उसका
1: जी
0: पेट भी सही रहेगा।
1: जी
0: साथ साथ खनिज लवण यानी जो मिनरल हैं वो लगभग 50 ग्राम मिनरल भी उस पशु को आप रोज खिलाएं। तो इस तरह से जो खाने और पीने के अगर आप ध्यान रखेंगे तो हीट स्ट्रेस का असर पशु में बहुत कम होगा और उसका दूध भी ठीक रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था शुरुआत में भैंसों में ऊष्मीय तनाव का असर ज़्यादा देखा जाता है, तो उनके लिए क्या उपाय अपना सकते हैं?
0: जैसा हमने बताया था कि जो क्योंकि भैंस में जो पसीने की ग्रंथियां कम होती हैं,
1: जी
0: साथ साथ इसका रंग भी काला होता है, तो हीट ज़्यादा ये खींचती है। उसके अलावा भैंस है उसमें हमें एक व्यवस्था करनी है कि जो मौसम है अगर बहुत गर्म हो रहा है तो स्प्रिंकलर पानी का फव्वारा, उसमें हमें पंखे की व्यवस्था करनी है, एक वेलोइंग टैंक की व्यवस्था करनी है कि जिसमें जाके दिन में 1-2 घंटे वो तैर सके।
1: जी
0: साथ साथ उसको दिन में 4-5 बार नहला देंगे तो उसका तापमान कंट्रोल में रहेगा और उसमें हरे चारे की मात्रा उसकी खुराक में आप अवश्य बढ़ा दें।
1: जी डॉक्टर साहब, बात करें कि जैसे पशुओं में समय पर गाभिन ना होने की समस्या भी आती है ऊष्मीय तनाव के कारण, तो अगर इस तरह की समस्या पशु में आ रही है, पशुपालक क्या उपाय कर सकते हैं?
0: जी, इसमें दो चीज़ें हैं कि पशु हीट में नहीं आ रहा है या पशु में रिपीट ब्रीडिंग हो रही है कि बच्चा ठहर नहीं पा रहा है।
1: जी
0: पहले तो क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पशु स्ट्रेस में रहता है, तो ऐसे में हीट के लक्षण भी कई बार वो नहीं दिखाता है, तो हीट के लक्षण पहले तो पकड़ना ज़रूरी है वरना आपके 21 दिन चले जाएंगे, फिर वो अगली बार दिखेंगे।
1: जी
0: तो हीट के लक्षण ज़्यादातर आपको दिखेंगे सुबह के समय 4-5 बजे या फिर आपको दिखेंगे रात के समय 10-11 बजे, तो थोड़ा उस समय अलर्ट रहें। उस समय अगर दिख रहे हैं हीट के लक्षण, और ज़्यादातर आपको तार दिखेगा, एक कांच जैसा तार, मतलब एकदम पारदर्शी सा तार गिरता दिखेगा, वो भी
1: जी
0: दिन के
1: जी
0: समय नहीं, तो कोशिश करें उस समय आप हीट को देखें ध्यान से, और जो कृत्रिम गर्भाधान है वो भी ठंडे समय में ही कराएं।
1: जी
0: क्योंकि अगर आप दोपहर के समय टीका लगवाएंगे, AI कराएंगे, तो गर्भ ठहरने की संभावना बहुत कम होगी,
1: जी
0: और तो इसीलिए सुबह या देर रात को ही आप टीका लगवाएं। और AI करने के बाद पशु को कम से कम 2 घंटे तक पंखे या स्प्रिंकलर के नीचे रखें,
1: जी
0: और AI के बाद ठंडे पानी से स्नान यानी सिर पर पीठ पर थोड़ी देर उसको ठंडा पानी डाल दें ताकि उसका जो आंतरिक तापमान है कम हो जाए, और इसी से ही गर्भ रुकने के चांस 30-40% बढ़ जाएंगे।
1: जी
0: तो इस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ पशु चिकित्सक की सलाह से कुछ स्पेशल हार्मोन आते हैं GnRH वाले, रिसेप्टाल जैसे,
1: जी
0: तो वो पशु चिकित्सक की सलाह से आप कृत्रिम गर्भाधान AI से पहले लगा सकते हैं, उससे भी संभावना बढ़ जाएगी गर्भ ठहरने की।
1: जी बात करें पशु में हीट स्ट्रेस के ज्यादा लक्षण दिखने पर जो किसान हैं या पशुपालक भाई हैं, प्राथमिक उपचार के रूप में क्या-क्या काम कर सकते हैं?
0: जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीट स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए शरीर का तापमान 104 डिग्री तक पहुंच गया,
1: जी
0: वो खड़े होकर बहुत बेचैन है, लार टपक रही है, उसकी आंखें भी लाल हो गई हैं और वो बहुत तेज़ी से सांस ले रही है, यानी उसके जीवन पर खतरा है, तो ऐसे में आपको तुरंत उसको छाया में रखना है, उसके शरीर पर ठंडा पानी डालना है, खास उसके सिर पर, उसकी पीठ पर, बर्फ़
1: जी
0: नहीं डालनी, ठंडा पानी डालना है और लगातार कम से कम आधे घंटे तक आप डालें। साथ साथ कोई टेबल फैन या पंखे की व्यवस्था कर दें आसपास ताकि ठंडी हवा से उसका तापमान कंट्रोल में आए,
1: जी
0: और साथ साथ में जो भी ORS उपलब्ध हो, नहीं उपलब्ध है तो 100 ग्राम ग्लूकोज में थोड़ा नमक डालकर उस गाय या भैंस को ज़रूर पिला दें। साथ साथ क्योंकि उसके पेट की उस समय एसिडिटी बैलेंस खराब हो जाता है।
1: जी

0: तो 50 ग्राम मीठा सोडा भी पानी में डालकर उसे पिला दें। ये सब कार्य आप कर सकते हैं और इसके बाद तुरंत आप जो पशु चिकित्सक है उसको कॉल करें और उससे मदद मांगें।
1: डॉक्टर साहब, अंत में कोई खास सलाह पशुपालकों को यदि देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं?
0: यानी ऊष्मीय तनाव से बचने के लिए पर्यावरण को ठंडा रखना है, खान पान को आपको उत्तम रखना है, खान पान को थोड़ा बदलना है और पशु के संकेतों की तरफ ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ना आपका दूध उत्पादन घटेगा ना उसकी प्रजनन क्षमता घटेगी।
1: डॉक्टर अनुज चौहान जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने कार्यक्रम कृषि पाठशाला के माध्यम से डेयरी पशुओं में ऊष्मीय तनाव और प्रबंधन विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप स्टूडियोज में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI, इज्जत नगर, बरेली।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना सुनिए। भगवान दास पुत्र जागनलाल निवासी ग्राम मैनी थाना फरीदपुर जिला बरेली, सूचित करते हैं कि इनके पुत्र जिसका नाम प्रमोद है, उम्र लगभग 29 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, शरीर मजबूत है और आंख काली, बाल काले घने, शर्ट व काले रंग की पैंट व पैरों में चप्पल प्लास्टिक की पहने हुए हैं तथा सिर पर घने काले बाल हैं, जो 14/6/2023 से सुबह 8 बजे से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो क्षेत्राधिकारी फरीदपुर जनपद बरेली, प्रभारी निरीक्षक थाना फरीदपुर जनपद बरेली को सूचित कर सकता है। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति से संबंधित एक और सूचना सुनिए। श्री महेंद्र पाल पुत्र नथुलाल निवासी वार्ड नंबर 8 कस्बा बथाना विशारदगंज जनपद बरेली, सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी पुष्पा जिनकी उम्र 32 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, शरीर साधारण है, चेहरा सामान है, बाल लंबे हैं और आंख नाक कान औसत हैं, जो हरी साड़ी पहने हैं, हाथ पर पुष्पा गुदा है, 17/6/2026 से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो नरेश कुमार कश्यप, प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना विशारदगंज बरेली को सूचित कर सकते हैं या क्षेत्राधिकारी औला जनपद बरेली को सूचित कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8755650115। मोबाइल नंबर दोबारा सुन लीजिए, इस नंबर पर भी आप इनको सूचित कर सकते हैं, 8755650115। खोए हुए व्यक्ति संबंधित सूचना समाप्त हुई।

104 FM पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी। और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।

0: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
1: अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी हैं। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
1: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी

जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में चार व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में सात व्यक्ति सवार थे जिनमें से चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं सौदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों के इलाज में वेंटिलेटर और आधुनिक मशीनों की सुविधा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
2: के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच।
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर। थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल।
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
3: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD।
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल
3: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: सभी श्रोताओं को और पंडित जी आपको मेरा नमस्कार।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है।

0: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। क्योंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
1: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भा पीरियड है,
0: जी गर्भकाल
1: है 37 वीक से,
0: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का समय है
1: जी, वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
0: जी।
1: लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
0: अच्छा,
1: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
0: जी, जी।
1: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
0: जी,
1: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में है,
0: अच्छा,
1: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
0: अच्छा,
1: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
0: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
1: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
0: जी।
1: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
0: जी
1: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
0: जी, जी।
1: जो बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
0: जी, अच्छा।
1: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
0: जी, जी।
1: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने 9 दिन 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने यानी जो 26-24
1: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाए,
0: नॉर्मल माना जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं तो 6 महीने 6.5 महीने का ही
1: बच्चा? जी जी जी, 6.5 महीने के जो बच्चे, 6 महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
0: जी,
1: तो उनमें एक तो सबसे अधिक जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते,
0: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत नहीं,
1: हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर, जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में है तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके
0: जी, जी।
1: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
0: अच्छा,
1: तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशियंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके,
0: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली
1: क्षमता तो कम है ही
0: जी,
1: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उससे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके,
0: अच्छा,
1: मतलब सांस की गति बढ़ा के
0: ऑक्सीजन की जो जरूरत
1: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है, जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एनआरडीएस या एचएमडी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
0: डॉक्टर साहब क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सल्फेट?
1: ये सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है, लेकिन जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो उनमें कम होता है, ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से, और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स है उनमें हमेशा एक डर रहता है, मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए प्रॉपर,
0: अच्छा,
1: डोजेज में
0: जी,
1: तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
0: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयाँ बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
1: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े,
0: यानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती है,
1: वो फैसला लेती है,
0: अच्छा।
1: कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो

0: माँ को ही लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं ना, स्टेरॉइड कहा जाता है, और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता
0: है? नहीं, ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती है। अच्छा। वो भी सिर्फ दो दिन के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर में, लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं। और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
1: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है तो ये उचित है।
0: जी,
1: ये बच्चे के हित में।
0: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट,
1: जी जी,
0: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे। अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट, हमें डाउट, अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
1: अच्छा, ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
0: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना।
1: अच्छा,
0: है ना। तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया, या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया, या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली, लैट्रिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक इलाज की बात है, एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है या अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
0: जी, अब पंडित जी आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते।
1: जी,
0: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दें।
1: जी,
0: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता। तो ये प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं, ह्यूमिडिफाई जो आद्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
1: जो नमी,
0: ह्यूमिडिटी, हाँ, नमी को और टेम्परेचर, तापमान को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी की, जिसको ओमनीवेड बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं, उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी, और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं।
1: जी, आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनीवेड, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है, लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
0: जी जी, बिल्कुल ठीक कहा है। और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है, उसमें बच्चे को वो अपने, उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चा होता है, और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, वहां उसको दूध पीता रहता है और उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है।
1: जी जी,
0: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
0: हेलो।
2: हेलो
1: जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं। जी जी, आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में।

0: जी जी मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
0: जी,
1: नियमित श्रोता।
0: जी जी, आज क्या प्रश्न है आपका?
2: सर हमारा सवाल ये सर, जो प्रेमा चोर जो बच्चा है वो किसे कहेंगे जी? प्रेमा चोर बच्चा है, पहली बात तो।
0: जी जी
1: जी, चलिए एक सवाल। दूसरा
2: सवाल ये सर, प्रेमा चोर बच्चों की देखभाल के लिए

0: इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
1: मैं एक और जानकारी लेना चाह रहे हैं, प्रेमेच्योर बच्चों में नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
0: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे हैं। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
2: मशीन
0: जो मशीनें कौन सी आती हैं? वो तो है, समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं। ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है। ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी नियोनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर KG के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ, फिर बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ROP होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो इस तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन। जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी, वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो इनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें, जिसको बोलते हैं मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अगर तो बर्थ एस्फिक्सिया और मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसकी ऑक्सीजन गिरने लगती है और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती है। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसो डायलेटर है, मतलब ये लंग्स के जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को उन नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
2: जी, और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
1: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए क्लोरवीन का, वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए सीरम क्लोरवीन चेक हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। तो आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की समझ

0: समस्याएं ये होती हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी देने के लिए डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: हम राजपुर कला से बोल रहे हैं साहब,
1: बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: जी आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी है कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पे ही जन्म हो गो है, और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पर सही होता है बना है खा रही है, तो जाके अब हमें क्या करने हो, जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी ऐसे है, जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
0: और वजन कितना है इसका?
3: वजन तो ऐसी हो जा मेरी ना चाहे 120 के करीब।
0: देखो जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं, वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से, या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए, अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है, तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
3: लगभग हो चुका था 22 दिन को।
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में, तो आपको करीब 20-22 ml 23 ml दूध पिलाना है, और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा, या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़वा लीजिए और घर पे फीड करिए, बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए, और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब अब तक तो ठीक है, लेकिन जो गाँव में निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
0: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध पिलाएंगे तो।
3: शुरू शुरू में साल रुई से मतलब जो है घर में गांव में पिया दो, अब वो निप्पल से दे दो शुरू कर दो, तो अब पी तो निकलो, लेकिन समस्या जो आएगी वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिचको सोच चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
0: देखिए निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है, और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच कटोरी से दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी, और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं, एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
3: अच्छा तो साहब आपकी सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी, लेकिन बाबू सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जाके ले हमने कहा करने पड़ेगा।
0: देखिए दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का वजन 1 किलो आप कुछ बता रहे हैं, तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन, ये दवाइयाँ चलनी चाहिए। अच्छा पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा उसके बच्चे का तापमान हमेशा, आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पे ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है, और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है, आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, KMC केयर। तो माँ या घर में कोई और है सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे, जैसे माँ गाउन पहन सकती है और अपने दोनों छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय, तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा

0: उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा, आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
1: अच्छा सर, क्या आप जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी तो माँ के दूध तो केले और बाकी जो हलवा वगैरह आता है और जे मतलब भैंस को या बकरी को दूध है, जो आगे चले कितने समय बाद हम बात चलाना शुरू करें?
0: 6-7 महीने तक, 6 महीने तक आप कुछ नहीं देंगे, सिर्फ माँ का दूध, शहद, गुटी, पानी, ऊपर का दूध, बकरी का दूध, शहद या गाय भैंस का दूध, ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
1: अच्छा, हाँ अपने जो पड़ोस में है, जैसा कह रहे हैं कि बकरी का दूध देने करो, कोई बात ना है तो आप देंगे तो नुकसान ले तो
0: नहीं। बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं है
2: जी।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है, लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है, और
0: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी, वो अमृत ही पिलाना चाहिए,
0: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा, ये बात।
0: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है। अच्छा। तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है, और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है, एक चीज, और इसलिए एक माँ दूसरे माँ को दूध, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
2: अच्छा,
0: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
2: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
0: हाँ, वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना
2: डॉक्टर साहब। ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती है जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है, विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए, ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि, और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है
2: जी,
0: कि दूध कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया, वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के 2 बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को 2 बच्चे के हिसाब से दूध होता है
2: जी।
0: और जब बच्चे का, जैसे शुरू का दूध अलग होता है, तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
2: जी।
0: और शुरू के 2-3 दिन बिल्कुल दूध अलग होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
2: जी।
0: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
2: अच्छा।
0: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
2: बच्चे की आवश्यकता के
0: अनुसार। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माओ को दूध में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भधारण करने की, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल।
2: अच्छा।
0: ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने, आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में। दूसरी चीज, माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर, वो जब जब आपको बुलाएं, माँ को समय से टीके लगवाएं, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराएं, है ना। फिर उसके बाद उसका जो जन्म है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टेरॉइड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, उसके बावजूद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके। सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका IQ सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे

0: सारी सुविधाएं हो।
1: बिल्कुल,
0: आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया, सब जगह नर्सरी एक सी है, सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए। जो बातें आपने बताई हैं, अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
0: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
1: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे।
0: और माँ का दूध पिलाएं तो 2-4 आइंस्टीन भी पैदा होंगे देश में।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, एचएफएनसी और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जांच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विषय था समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों के इलाज में वेंटिलेटर और आधुनिक मशीनों की सुविधा। विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रात के 8 बजे हैं और आइए अब सुनेंगे अब आप अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
5: संख्या एक महत्वपूर्ण अवयव हो जाता है। कारण, कोई भी सरकार हो, वह देखती है कि किस वर्ग को वह बिलोंग करती है, चाहे सामाजिक तौर पर हो चाहे आर्थिक तौर पर हो, उसे देख करके फिर योजनाएं बनाई जाती हैं और देश की समृद्धि का काफी कुछ खाका तैयार किया जाता है। क्या गूढ़ तथ्य है उसे जानने के लिए हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आपने सुन ही लिया, मुकुल श्रीवास्तव जी हैं। आप प्रोफेसर हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जानना चाहेंगे, पहली बात यही कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रित रहे नई नीति भी आ रही है, ऑन द होल अगर देखना हो तो क्या, पहले एक सामान्य सा आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे।
6: देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिसे हम धरती बोलते हैं, उसका एक संतुलन है और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैसे जल जंगल जमीन की बात होती है, उसी तरीके से इंसान और जानवरों की भी बात होती है। उन सब का कि अगर सिर्फ जानवरों की ही आबादी बढ़ जाए तो वो इंसानों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। सिर्फ इंसान ही हर जगह दिखने लग जाएंगे तो प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब आप देखिए कि आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं और अगर आपको पॉलिथीन का एक टुकड़ा ना मिले तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंसान कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। ये जनसंख्या के बढ़ने का एक कारण है कि इंसान धरती के हर कोने में पहुंचा और उसी से जुड़ा हुआ मामला है कूड़ा, जो मानव द्वारा अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये विकसित होने की एक निशानी भी आप इसे कह सकते हैं कि पहले जो मानव जनित कूड़ा होता था उसे धरती अवशोषित कर लेती थी, पचा लेती थी, समा लेती थी, पर अब मानव इस तरह के कूड़े जो है वो पैदा कर रहा है और बगैर ये सोचे समझे कि इनका निस्तारण कहाँ क्या होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा एक जिसे बोलते हैं दुष्चक्र का निर्माण हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनसंख्या क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण ये है कि इस धरती की एक सीमा है और वो सीमा का पालन करते हुए हमें इसको समेकित रूप से, इस धरती पर जो मानव है वो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ना कि ऐसा हो जैसा कि आजकल हमारे देश भारत में हो रहा है कि गांव खाली हो रहे हैं और शहर जरूरत से ज्यादा भरे जा रहे हैं। अगर गांव भरे रहते तो शायद शहरों पर जनसंख्या का जो दबाव हम महसूस कर रहे हैं, जिनके कारण नई जनसंख्या नीति की बात हो रही है या बच्चे कम पैदा करने की बात हो रही है, तो शायद ये बातें इस तरीके से ना की जा रही होती।
5: डॉक्टर साहब, ये इसको अगर हम कहें तो हमारी

0: इंटरनल आंतरिक व्यवस्था में ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया, इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है, पारिस्थितिकी जिसको हम कह लेते हैं, उसमें तमाम तरह के जीव हैं और उन्हीं जीवों को शायद हमारे शास्त्रों में या फिर हमारे समाज में यह कहा जाता है 84 लाख योनियाँ हैं और ये एक दूसरे में घूमती रहती हैं। तो क्या मनुष्य योनि में जो वृद्धि हो रही है यानी जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या इकोलॉजिकल सिस्टम पर इसका कोई असर पड़ रहा है? दूसरे जीव कम हो रहे हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं?
1: बड़ी काबिले गौर बात आपने कही है और बहुत मार्के की बात कही है। आजकल ये माना जाता है कि जब हम अपनी परंपराओं, संस्कारों या प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो माना जाता है कि हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं या विज्ञान की आधारित सोच नहीं है। पर जब जो 84 लाख योनियों की बात की गई तो उसके पीछे पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र था कि मान लीजिए कि इस जीवन में अगर आप इंसान बने तो अगले जीवन में हो सकता है कि आप शेर बने। तो ये एक साइकिल थी जो चलती रहती थी, लेकिन इस विकास की आपाधापी में हमने इस चक्र पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के जंगल साफ होते चले गए, अब जंगल के जानवर या तो मार दिए गए या फिर वो चिड़ियाघर में आ गए। तो उनका जो नैसर्गिक प्रजनन की प्रक्रिया थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि आप ये देखें कि वैज्ञानिक तथ्य ये बताते हैं कि हर दिन इस संसार से कोई न कोई जीव जंतु की प्रजाति जो है वो लुप्त होती चली जा रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जो डोडो की बात होती है, मॉरिशस का एक पक्षी था जो उड़ नहीं पाता था लेकिन चिड़िया की तरीके से होता था, तो उसका इतना शिकार किया गया कि अब वो किताबों में ही देखने को मिलता है। बाकी के तो जो जानवर थे वो लुप्त हुए, वो प्राकृतिक तंत्र के कारण आपदाएं आई उनके कारण लुप्त हुए और आज उनके जीवाश्म मिलते हैं। पर पिछले 200 सालों में जो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, बहुत पुरानी बात, हमारे वो श्रोता बंधु जो 40-45 साल पार कर चुके हैं, अगर वो अपना जीवन देखें और अपने आसपास के परिवेश को याद करें तो पाएंगे कि उनमें गौरैया रहा करती थी, उसमें कौवे रहा करते थे, उसमें गिद्ध भी दिखा करते थे। पर अगर आजकल वो नहीं दिखते हैं तो उसका नतीजा है कि वो मानव योनि में आ गए हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो गड़बड़ा रहा है।
0: और यही लगता भी है, परिलक्षित होता है कि यही एक कारक है जो प्रभावित कर रहा है। अब जो प्रभावित कर ही रहा है, आधुनिक काल है, विकास की प्रक्रिया को भी थामना नहीं है, उसे भी बढ़ते रहना है। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि जनसंख्या का जो दबाव होता है उसका क्या विकास की प्रक्रिया और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है?
1: बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो एक समावेशी विकास की बात होनी चाहिए, ना तो किसी एक जगह ना किसी एक शहर की विकास होनी चाहिए। और विकास अपने आप में कोई शब्द नहीं है, विकास बहुत सारे सामाजिक अवयवों का एक मिला जुला मिश्रण है। जब आप विकास की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा भी शामिल है, उसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, उसमें सफाई भी शामिल है और उसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन खास करके जो पश्चिमी देशों का जो मॉडल है, हमने उसे अपने परिवेश में एज इट इज या वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा लागू कर दिया, बगैर अपनी जनसांख्यिकी, अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को देखे समझे बगैर। जैसे कि संयुक्त परिवार हमारी परंपरा का हिस्सा रहे, हमारे यहाँ पर एकल परिवार की कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है। आप पुराने धर्म ग्रंथ उठा करके देखें, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो या जो और भी पौराणिक ग्रंथ हैं, उन सब में जब परिवार की संकल्पना की जाती है तो माता, पिता, पुत्र और उनका जो पूरा का पूरा कुनबा होता है वो शामिल होता है। और इस सब में क्या होता है कि हम एक जिसे बोलते हैं कि समावेशी विकास की तरफ चल रहे थे, कि जैसे कि पश्चिम के देशों में होता है कि परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के पास 4 गाड़ियां। हमारे यहाँ पर अगर 6 लोगों का परिवार है, 1 गाड़ी है तो पर्याप्त है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसे ये कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। हमेशा ये कहा जाता था कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, पर वहां पर क्या है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबित, कि भाई इस चक्कर में उन्होंने प्रकृति का अनावश्यक दोहन किया और खुद विकसित होकर के बैठ गए। अब वो भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों को ये दिखाते हैं कि देखो ये है विकास का मॉडल। उस विकास के मॉडल को ऐसे देश जिनकी जनसंख्या ज्यादा है अगर आप अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि प्रकृति पर बहुत बोझ पड़ेगा। वहां जनसंख्या कम है लेकिन उन्होंने प्रकृति का ज्यादा दोहन कर लिया, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, हम दोहन नहीं करना चाह रहे हैं पर उसका दबाव है, दबाव बाजार का है। वो उसे विकसित होना मेरे हिसाब से नहीं कहेंगे कि अगर आपके घर में एक ही जगह पर जाने वाले 4 लोग हैं तो 4 लोग अपनी अलग अलग गाड़ियों से क्यों जाएं?
0: बिल्कुल,
1: जिसे वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग सामूहिकता की संस्कृति वाले देश वाले लोग हैं, हम सामूहिक रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। पर उनके मॉडल को अप्लाई करने के चक्कर में हमने ये एक सबसे

0: जो जिसे बोले कि ये विडंबना पैदा कर ली कि हमने विकास को कुछ जगहों पर कुछ संकुलों में केंद्रित कर दिया, जिससे जो विकास का फायदा, ऐसा नहीं कि देश में विकास नहीं हुआ, वो हर स्तर तक नहीं पहुंच पाया। तो जो जगह विकसित हो गई वहां भीड़ ज्यादा हो गई, और जो नहीं विकसित हो पाई वो खाली होती चली गई।
1: आप क्या देखते हैं कि सामाजिक स्वरूप जो हमारा है वर्तमान का, उसमें क्या विकास की गति या कहें कि अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता कहीं दिखाई देगी?
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिखाई देगी। पहली चीज तो ये कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, आप अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ज्यादातर लोग जो शिक्षित हो रहे हैं, जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है, वहां पर आप ये देखें कि वो बगैर किसी दबाव में एक या दो बच्चों के साथ अपना परिवार आगे बढ़ा रहे थे। अब जब दो बच्चों के साथ आप परिवार बढ़ा रहे हैं तो जो सुख सुविधाएं चार छह बच्चों में बंटनी चाहिए वो दो में बंट रही है, तो आप कम पैसे में भी उनका बेहतर भरण पोषण कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा मानव संसाधन है, या जिसे ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उनको पौष्टिक भोजन मिलेगा, उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। उससे क्या होता है कि आप चार, अगर आप दुर्बल लोगों को या कमजोर बीमार लोगों से सेवा लें और दो स्वस्थ लोगों से सेवा लें, तो उसका अंतर आ जाएगा। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर होगा, और चूंकि अब इसमें सरकार का भी प्रेशर रहेगा तो लोग पहले से ज्यादा सचेत रहेंगे और इस बात को समझेंगे भी, और इस हिसाब से एक लोकमत का निर्माण होगा, और फिर शायद इस कानून की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लोग
1: जी
0: अपने आप ही इस तरह से आगे चलेंगे।
1: बिल्कुल सही है, आपने कहा कि मानव संसाधन जो है वह अन्य संसाधन जो हमारे कृत्रिम संसाधन है उससे समावेशी परिवेश बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो वह बेहतर होगा। बहुमूल्य जानकारी है, बहुत ही समझदारी से आगे चलने की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को समृद्ध बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता जनसंख्या बनाम विकास, इस विषय में बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्लीज सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भजन, कलाकार हैं अभिषेक कुमार। इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चंद्रेश पांडे, ढोलक पर दीनदयाल तिवारी, बांसुरी पर अलका सिंह और ऑक्टोपैड पर प्रखर प्रताप श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं इनसे तुलसीदास की

अभी आप अभिषेक कुमार से भजन सुन रहे थे। इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चंद्रेश पांडे, ढोलक पर दीनदयाल तिवारी, बांसुरी पर अलका सिंह और ऑक्टोपैड पर प्रखर प्रताप सिंह। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म शर्मिली से, आवाज किशोर कुमार की, शब्द रचना नीरज के और संगीत एसडी बर्मन का।

आनंद बख्शी के शब्द रचना को सुहारा संगीत से एस डी बर्मन ने, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम जुगनू।

समाधि फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय

0: समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789185523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार

0: समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त

0: हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मन्नाडे और सुमन कल्याणपुर को सुनिए। फिल्म का नाम है सखी रॉबिन, गीतकार योगेश और संगीतकार रॉबिन बनर्जी।

ये आवाजें थी मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम था सखी रॉबिन। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, गीतकार प्रेम धवन, संगीतकार रोशन और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

फिल्म का नाम था वल्लाह क्या बात है। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। आपके

कार्यक्रम की अगली पेशकश नौशाद साहब का संगीत शकील बदायूनी के बोल स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

कार्यक्रम में आप सुनिए गुलशन बावरा का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है दत्ताराम ने। युगल स्वर सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम नीली आंखें।

0: की नशीली हवा।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहब की और धुन सलील चौधरी की है।
3: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्यार का,
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे

0: दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: सर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

0: आज तो चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

1950 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. ei mani shankar shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: Aaj ke karyakram mein Dr. Ramavarpu Madhuri Devi ki sangat kar rahe hain mridangam par श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु येडकोंडलु ऑन द मृदंगम एंड श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ऑन द घटम।
0: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapati, a composition of Muttaya Bhagavatar in Nataragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Reethi Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा

0: Canadian World Cup bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।